0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

आजकल जब मुझसे कुछ कोई पूछता है ना, या कहता है कि यार कैसा चल रहा है जिंदगी में, मैं कहती हूँ कि यार सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, बिना सोचे एक ही सेंटेंस होता है, सब बढ़िया, सब मस्त चल रहा है एकदम जिंदगी में। क्योंकि ना अपनी थकान को अब एक्सप्रेस करने का मन नहीं करता है मेरा, क्योंकि कभी कभी ना शरीर थका नहीं होता है, आपका दिमाग थका होता है, और उस दिमाग की थकान को कैसे एक्सप्लेन किया जाए किसी को ये समझ नहीं आता है। दिन भर ना हमारे दिमाग में 50 चीजें चलती हैं, और उन 50 चीजों को हम दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि यार मेरी जिंदगी में ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो जनरली हम सबसे यही कहते हैं कि हाँ दिमाग और दिल थका हो तो भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वैसे आपने ये झूठ कितनी बार बोला है, शेयर कीजिएगा मेरे साथ। चलिए फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए और सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM।

दिन भर की थकान के बाद दिल ये चाहता है कि बस जल्दी से रात हो जाए और हम जाकर सो जाएं। आपके साथ भी होता है ऐसा? मतलब जब बहुत सारा आप काम कर लेते हैं, बहुत सारा फाइल में या कंप्यूटर्स पे या अपने बॉस की डांट है ना, बहुत सारी खाली, बहुत सारा काम कर लिया, तो दिल चाहता है कि यार बस अब किसी तरह से जा करके सो जाएं। मजे की बात यह है कि जब आप बेड पे जाते हैं और आपने बहुत सारा काम किया, आपका दिमाग बहुत ज्यादा थक गया हो, तो आपको नींद नहीं आती है, गायब हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं भाई, क्या करें, नींद तो आनी है, दीवारें देखने से अच्छा है कि फोन उठाते हैं और रील्स को स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। और वो स्क्रॉलिंग जो है जब शुरू होती है तो हम कहते हैं कि यार बस 5 मिनट देख लें फिर फट से सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। लेकिन रील्स देखने से नींद किसको आती है? 5 मिनट के 40 मिनट कब बन जाते हैं, 1 घंटा कब हो जाता है पता नहीं चलता है। हम उन लोगों में से हैं जो आज के दिन पे सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहा। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, ऑफकोर्स मेरे साथ भी यही होता है, हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने आप को और प्रॉब्लम में फंसा कर खुश होते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है ना प्रॉब्लम में फंसना, नहीं मतलब उस प्रॉब्लम की तरफ जाना अच्छा लगता है क्योंकि हम ये सोचते नहीं है कि हम एक नई समस्या में फंसते चले जा रहे हैं। आप रील देखकर जो दिमाग आपका शांत होना चाहिए और परेशान हो जाता है। कई ऐसी रील्स आती हैं जो न्यूज रिलेटेड हैं या कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए से आपका मन परेशान हो जाता है, फिर वो नींद जो आ सकती थी शायद 5 मिनट में, अगर आप कोई अच्छी स्टोरी पढ़ लेते या सुन लेते, वो आपकी आंखों से और गहरी दूर हो जाती है। इसलिए पढ़ने की आदत डालिए दिन भर की थकान के बाद, या कुछ सुनने की आदत डालिए ताकि आप चैन से सो सकें। कोशिश करिए, मैं भी कर रही हूँ आजकल, रील्स देखना या फोन देखना आपके माइंड को, आपके ब्रेन को और थका रहा है। और वैसे भी जब फोन की रोशनी आंखों पे लगती रहती है तो उन्हें दिन का गहरी दूर हो जाती है। इसलिए पढ़ने की आदत डालिए दिन भर की थकान के बाद, या कुछ सुनने की आदत डालिए ताकि आप चैन से सो सकें। कोशिश करिए, मैं भी कर रही हूँ आजकल, रील्स देखना या फोन देखना आपके माइंड को, आपके ब्रेन को और थका रहा है। और वैसे भी जब फोन की रोशनी आंखों पे लगती रहती है तो उन्हें दिन का एहसास होता है, उन्हें नींद नहीं आएगी।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हा? लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस, आपके साथ है सताक्षी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मूर्ख किसे कहेंगे तो आपका क्या जवाब होगा कि मूर्ख किसे कहते हैं? देखिए, मेरी नजर में अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा जवाब होगा कि यार मूर्ख उसे कहते हैं जो ज्ञान लेना नहीं चाहता है, जो नहीं चाहता कि उसके पास नॉलेज हो, और वो जितनी नॉलेज उसके पास है, वो लिटिल वाली नॉलेज जिसका कोई और छोर नहीं होता, वो उसे ही बेस्ट समझता है। वो अपने आप को ज्ञानी मानता है और सबको मूर्ख समझता है। उसे लगता है कि उससे ज्यादा किसी को नहीं आता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वही है, और जो सीख रहा है उसे सीखने में समय लग रहा है उसे आप मूर्ख नहीं कह सकते। जो सीखना ही नहीं चाहता है एक्चुअली वो खुद बुद्धू बन रहा है और उसे लग रहा है कि सामने वाला बुद्धू है। आइए उन बुद्धुओं के नाम एंजॉय करते हैं। अगला ट्रैक सुनते रहिए रेडियो प्रसारी, आपके साथ है सताक्षी।

सुबह का ताजा तरीन शो और मॉर्निंग ट्रैक्स आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। जी हाँ दोस्तों, सफर है ये इट हैपेंस का। बात करते हुए थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी ना दोस्तों की। दोस्त बड़े प्यारे होते हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन दोस्ती सबसे नहीं होती है। आपके साथ हर मिलने वाला इंसान आपका दोस्त नहीं हो सकता है। हर वो इंसान जिसके साथ आप दिन भर में हाथ मिलाते हैं, आप उसे दोस्त नहीं कह सकते। आप रोज हजारों लोगों से मिलते हैं, उनके साथ काम करते हैं, पर हर कोई आपका दोस्त नहीं होता है, ना ही आप सबके दोस्त होते हैं। फ्रेंडशिप जो है वो सेल्फलेस होती है, उसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई जलन नहीं होती। अगर आप किसी के साथ उठते हैं बैठते हैं तो उसे दोस्त कहना छोड़ दीजिए। ये मत बोलिए मेरा दोस्त है, आप उसे जानते हैं, वो आपका कलीग हो सकता है, साथ काम करने वाला हो सकता है, बट दोस्त नहीं हो सकता। दोस्ती एक अलग ही चीज है और सबके साथ नहीं होती है, कुछ लोगों के साथ होती है दिल वाली दोस्ती। तो चलिए उसी दिल वाली दोस्ती के नाम एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी पर सताक्षी के साथ, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

क्यों ना, जब आप किसी पौधे को लगाते हैं और आप उसका जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो कई बार ये जरूरी नहीं है कि वो पौधा ग्रो ही करे, वो प्लांट जो है, वो पौधा जो है, वो कभी कभी खराब होने लगता है या फिर मर जाता है। इसलिए नहीं कि उसे आपने ट्रीट नहीं किया अच्छे से या उसे केयर नहीं मिली, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे जरूरत से ज्यादा केयर मिली। यू नो, कई रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। आप जब रिश्तों में जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, जरूरत से ज्यादा देते हैं, तो वो एफर्ट सामने वाले के लिए स्पेशल नहीं रह जाते, वो उसकी आदत बन जाती है और उसकी नजर में आपका रूटीन बन जाता है कि आप ही उसे पहले मैसेज करेंगे, आप ही उससे बात करेंगे, आप ही उसका ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, उसकी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखेंगे। तो ये उसके लिए जो है, ये अब आपके एफर्ट्स नहीं रहते, ये उसकी आदत है कि यार ये बंदा तो मेरे लिए करेगा ही, है ना। और ऐसे में आप एक मोड़ पर जाके फिर काफी लोनली फील करते हैं, आपको लगता है कि मुझे इस रिश्ते में एफर्ट्स ही नहीं मिल रहे पलट करके। तो कैसे मिलेंगे जब आपने एक्स्ट्रा दे दिया? किसी भी चीज को एक्स्ट्रा देंगे तो वो खराब ही होगी ना। इसलिए जिस इंसान को या जिस रिश्ते को जितनी जरूरत है उतना दीजिए, ताकि बैलेंस बना रहे। और सुनते रहिए ठापन सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी पर।

तो दोस्तों ये था आज इट हैपेंस पर मेरा आपके साथ एक और खूबसूरत और प्यारा सा साथ और कुछ बातों के साथ जज्बातों के साथ मेरे आपके साथ के साथ मिलती रहूंगी आपसे इसी सफर इट हैपेंस में। आज के अब इस साथ से सफर से वक्त है इजाजत लेने का। सो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, कल फिर से होगी नई मॉर्निंग आपके साथ मुलाकात। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: यार साग में कुछ दम नहीं है बिल्कुल मजा नहीं आया
2: किसी दिन घर आना असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें
1: कहाँ यार आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है
2: किस दुनिया में हो भाई क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से 99.9% प्योर मिल्क फैट से और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं
1: मुझे तो पता ही नहीं था अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर याद रहे 0400664435 पर या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

सत श्रीकाल जी, मैं संदेश अलख शर्मा, तुसी सुन रहे हो रेडियो ब्रिसवानी 101.1 ते जगला हो चुका है। हुण तक दे हम खबरां दा, तां फिर चलो करदे आं शुरुआत। रुक करदे भारत दीवाल जी ते एयर मार्शल सेवा मुक्त जतेंद्र मिश्रा नूं अयोध्या ते श्री राम जन्म भूमि तीर्थ खेतर ट्रस्ट दा पहला मुख कार्यकारी अफसर नियुक्त कीता गया है। ट्रस्ट दी मीटिंग विच मिश्रा दे नाम ते मोहर लगाई गई है। ट्रस्ट दे अंतरिम जनरल सकत्तर किशन मोहन ने मीटिंग विच लए गए फैसलां दी जानकारी दिंदिया दस्सिया है कि सीईओ अहुदिया लई 5585 अर्जियां विचों चुने गए 3 उम्मीदवारां विचों मिश्रा नूं इस अहुदे लई चुनिया गया है। उन्होंने कहा है कि मीटिंग विच अयोध्या दे मदन मोहन पांडे, दिल्ली दे महेश पागचंदका ते शिकोहाबाद दी डॉक्टर निर्मला यादव नूं ट्रस्ट विच नवे ट्रस्टी वजो शामिल करन दा भी फैसला लिया गया है। इत्थे दस दईए कि जतेंद्र मिश्रा हवाई फौज विच मार्शल रह चुके हन। उन्होंने हाल ही विच भारत वलों अतवाद के खात्मे लई छेड़े गए आपरेशन सिंदूर विच पछमी हवाई फौज की अगवाई की सी। एयर मार्शल वजो सेवा मुक्त होने मगरों हूं उन्होंने श्री राम जन्म भूमि तीर्थ खेतर ट्रस्ट का पहला मुख कार्यकारी अफसर नियुक्त किया गया है। उधर पंजाब की गल करिए, मनी लॉन्ड्रिंग दे मामले दे विच मनी लॉन्ड्रिंग दे चर्चित मामले नूं लैके इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वलों पंजाब पुलिस नूं तीजी वार चिट्ठी लिखी गई है। ईडी का कहना है कि इस मामले संबंधी पंजाब पुलिस नूं तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए है। इस मामले संबंधी हाईकोर्ट विच 3 सितंबर नूं जिहड़ी सुनवाई होनी सी उस तों पहलां ही एफआईआर की एक कापी ईडी नूं मुहैया करवाउण की गल कीती गई सी। ईडी ने खदशा जताया कि जेकर पुलिस केस दर्ज करन विच देरी करती है तां इस संबंधी सबूतां नूं नष्ट कीता जा सकता है जां उन्हां नाल छेड़छाड़ कीती जा सकती है। जानकारी मुताबिक पंजाब पुलिस ने पहला लिखे पत्र विच केस दर्ज करन तों पहला ईडी दे अधिकारी दी तैनाती दी मांग कीती सी। सबूत आदि नाल संबंधित पूरे रिकॉर्ड दी मांग कीती सी। इस तों इलावा केंद्रीय एजेंसी ने 7 अगस्त नूं ईमेल भेज के जानकारी सांझी कीती सी। ईडी दा कहना है कि जानकारी सांझी कीते जाण तों बाद 30 दिनां तों वध दा समां बीत गया पर हुण इस पड़ा विच किसे होर मुढ़ली जांच की लोड़ नहीं है। उधर पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह कतलकांड विच फांसी दी सजा दा सामना कर रहे अते पटियाला केंद्रीय जेल विच बंद बलवंत सिंह राजवाणा वल्लों अखां दे आपरेशन लई दायर कीती गई पटीशन दा निपटारा कर दिता है। जस्टिस सिंह बेदी दी अदालत ने स्पष्ट कीता है कि राजवाणा दीआं अखां दा आपरेशन किसी भी निजी अस्पताल विच नहीं करवाया जाएगा, सगो यह प्रक्रिया सिर्फ पीजीआई चंडीगढ़ विखे ही मुकम्मल कीती जाएगी। सुनवाई दौरान एएसजी वधीक सालिस्टर जनरल दीआं दलीलां ते गौर करदिआं अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी करदिआं फैसला सुनाया है कि आम लोग भी बेहतर इलाज लई पीजीआई नूं ही पहल दिंदे हन। अजिहे विच अदालत नूं राजवाणा वल्लों निजी अस्पताल विच इलाज करवाउण दी मंग पिछे कोई ठोस या जायज कारण नजर नहीं आ रहा। अदालत ने पटीशनर नूं छूट दित्ती है कि ओह पीजीआई विखे अपनी अखां दी डॉक्टरी जांच करवा सकते ने ते जेकर माहिर डॉक्टर आपरेशन नूं लाजमी मानदे हन तां इह आपरेशन पुलिस सुरक्षा हेठ पीजीआई विच कीता जावेगा। जिक्रयोग है कि जनवरी 2026 दौरान पीजीआई विच हुई जांच दौरान राजवाणा दीआं अखां विच मोतियाबिंद होण दी पुष्टि हुई सी। पटियाला केंद्रीय जेल दे अस्पताल विच इस आपरेशन दी सहूलत ना होण करके उन्हां ने हाईकोर्ट दा रुख कीता सी। उधर पाकिस्तान ने भारत नूं सिंधु जल संधि दे दायरे विच रह के मुड़ उसारू गलबात शुरू करन दी अपील कीती। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय दे बुलारे ताहिर अंदराबी ने यह बयान उस समय जारी किया जदों भारत ने स्थाई सालसी अदालत दे उस हुक्म नूं मनन तों इनकार कर दिता जिस विच अदालत ने भारत वल्लों सिंधु जल संधि नूं मुअत्तल करन दे फैसले नूं रद्द कर दिता सी। जिक्रयोग है कि पिछले साल अप्रैल विच पहलगाम विच होए अतवादी हमले तों बाद जिस विच 26 नागरिकां दी जान गई सी, भारत ने कई कूटनीतिक ते आर्थिक कदमां दे तहत सिंधु जल संधि नूं मुअत्तल करन दा फैसला लिया सी। भारत दे इस कदम नूं चुनौती देण अते संधि दी कानूनी स्थिति तय करन लई पाकिस्तान ने इस साल मार्च विच हेग स्थित स्थाई सालसी अदालत दा रुख कीता सी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਬਿਸਵਾਨੀ@bisswani.com। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਬਿਸਵਾਨੀ 101.1। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। हाँ तुम बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वन सर वर एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा सारा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। तो इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असीं ढेर सारिया थोड़े नाल थोड़िया मेरिया अपनिया सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे कुछ किसी दियां गल्लां कर लवांगे कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद मेरी पसंद सब पसंद रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा इंतजार है तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिसौनी वन सन ओ एम साडे फेसबुक पेज है जी बिसौनी एट बिसौनी डॉट कॉम साडी ईमेल आई टी है जरिया जिहड़ा भी तुहानूं चंगा लगता है वह अपनाओ पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

सोनी 107 एम ते चार्चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हैं। देखो फिल्मा दे हिट या फ्लॉप होने का हिसाब रखते हूं ता तुहानू इस नाल जुड़े कुछ टर्म्स ते इसका गणित जरूर पता होना है, जिवें ब्लॉकबस्टर ते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच की फर्क हुंदा है, स्लीपर हिट की हुंदा है, नहीं पता तो चलो इसे ते चर्चा कर लेने हैं। तो देखो जेकर तुहाडे दिमाग विच फिल्मी कीड़ा हैगा है तां बॉक्स ऑफिस दे नाल जुड़े सवाल परेशान करते होणगे, जिवें ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच फर्क, फुटफॉल की हुंदा है, किवें तय हुंदा है कि फिल्म हिट है या एवरेज है, स्लीपर हिट की हुंदी है, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। जेकर तुसी भी अपना फिल्मी जी के अपडेट करना चाहते है क्यों तां हुण मैं तुहानू इहो जिहे गल्लां दसन लगूंगी जानी हैगी है ना, जिन्हां नूं जान के तुसी कहोगे कि सच्ची इस तरह भी हुंदा है। सच्ची हुंदा है दस्सदे उस बारे, पर पहलां तुसी सुन लो एक गीत।

शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ग्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सबके लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ग्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश अलग दिनाल बने हुए। देखो सब तो पहला गल करते हैं फिल्म के बजट की। देखो किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होंदा। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी होंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल हुंदे ने जिवें एक्टर्स दी फीस, क्रू, सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट, ते इस विच ओ खर्च आउंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च हुंदा हुंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय हुंदा है हिट या फ्लॉप, इही दसदे आं। पप्पी लै गी सुणो।
1: It's Black Virus.

0: बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: सर्गुन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइटहाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो चे संदेश अलग दिन बने हुए हूं। जिम्मे तुम पहला दसिया से ना किवें तो तय हुंदा है कि फिल्म हिट है कि है या फ्लॉप, यही तो जानना सब तो ज्यादा जरूरी है। तो डिजास्टर तो शुरुआत कर लिए चलो डिजास्टर तो करते हैं। तो देखो डिजास्टर फिल्म केड़ी हुंदी है, जिहड़ी फिल्म अपनी लागत का 50% भी नहीं कमा पाती ना 50% भी हाफ भी कमाई नहीं कर पाती, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ दे विच बनी है 50 लाख भी ना कमाई कर सके तो वह डिजास्टर हुंदी है। फ्लॉप फिल्म अपने बजट तो घट कमाई करती है कि वह फ्लॉप हुंदी है। तो एवरेज फिल्म केड़ी हुंदी है, एवरेज हुंदी है फिल्म अपनी लागत कढ़ लैंदी है तो मामूली मुनाफा कमाती है, यानी कि 1 करोड़ दे विच बनी है तो 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ उसने कमाई कर ली है ना। हिट अपनी लागत तो घट 50% तो ज्यादा का मुनाफा, जिवें 1 करोड़ दे विच बनी है तो 1.5 करोड़ तो उपर दी जे कमाई कर ले तो वह हिट हुंदी है। तो सुपर हिट ये फिल्म अपनी लागत तो दुगनी कमाई कर दी है तो वह सुपर हिट हुंदी है। तो ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर फिल्म फिल्म अपनी लागत तो 3 गुणा या उस तो भी ज्यादा की कमाई कर ले और ब्लॉकबस्टर हो जाती है। तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म वो ये होंगी है, फिल्म पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे तो लागत तो 4-5 गुणा की ज्यादा कमाई करे।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 107.1 FM ते चार चे संदेश चौलक दे नाल तुसीं बने होए हो। हां जी, तां देखो हुण असली कमाई दा सच जानदे आ तां लोक अक्सर लोग समझदे हैगे ने कि जेकर फिल्म ने 100 करोड़ कमाए हैगे ने ते बजट 80 करोड़ दा हैगा तां फिल्म हिट है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। फिल्म की कुल कमाई का एक वड्डा हिस्सा टैक्स ते सिनेमा घर मालिकां दे कोल जांदा हैगा। निर्माता ते डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर से हाथ विच जो पैसा आता है उसनू डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते हैं कि फिल्म तद हिट मनी जाती है जब डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर उसकी फिल्म खरीदने की कीमत तो ज्यादा होगी।

0: कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए इस तो बाद हुण आपां गल करदे आं नॉन थिएटरिकल कमाई दी। अजकल फिल्मां रिलीज़ होने तो पहला ही पैसा कमा लैंदियां ने, एक प्रॉफिट राइट्स बेच के मिलता है जिवें सैटेलाइट राइट्स, इस विच चैनल से राइट्स लैंदे ने या ओ मूवी दिखाते रहते हैं, डिजिटल राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मूवी बेची जाती है, म्यूजिकल राइट्स गाने तो कमाई होती है। फिर होंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट, देखो कई बार फिल्म ना बॉक्स ऑफिस से कमाई के मामले में एवरेज होंगी है पर इन राइट्स की वजह ना प्रोड्यूसर्स मुनाफा कमा लेंगे ने, पर मूवी दे हिट फ्लॉप या एवरेज होने का वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस कमाई के हिसाब नाल ही तय होंगे।

0: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट
1: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द

हाँ जी तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो दसवानी वन सर वाने जी आर चे संदेश अलग दिन बने हुए हूँ। देखो फुटबॉल क्यों होंदा इस महत्वपूर्ण, इस बारे भी गल कर लें, इंपोर्टेंट क्यों होंदा। तो कमाई तो इलावा ना एक होर अहम पैमाना हुंदा ओही हुंदा है फुटफॉल, यानी कि किन्ने लोगों ने टिकट खरीदी हैगी है। मूवी दे टिकट अजकल महंगे हो गए ने, इसलिए 100 करोड़ रुपए कमाउणा सौखा हो गया। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनन दे लई इह भी देखिया जांदा है कि किन्ने लोगों ने टिकट खरीदे हैगे ने ते मूवी देखण लई लोग गए हैगे ने। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मां ओह हुंदियां ने जिन्हां दे विच फुटफॉल भी ज्यादा हुंदी है, जिवें शोले हुण तुहानू है कौन अते हम आपके है कौन ते धुरंधर भी इस कैटेगरी दे विच है शोले तो इलावा।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हूं। जी मैं वर्ड की गल कर रही हूं, शायद कई ने पहली बार सुनिया होना है, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा में समझा जाए तो स्लीपर हिट वह फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी भरकम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत में इसकी कमाई बहुत घट पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते फिल्म रफ्तार फड़दी है ते फाइनली बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित हुंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, 12वीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित।
0: जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।

पूरी उम्मीद हैगी है कि थानू ये सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेडे बॉलीवुड लवर है ने, बॉलीवुड नहीं मूवी लवर्स है ने, बेशक को कोई भी बॉलीवुड दी देखते हो, टॉलीवुड दी देखते हो, हॉलीवुड दी देखते हो, साउथ दी देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे जानने, तो थानू जरूर वधिया लगे होने हैं। तुसी बाकी जरूर दसो सानू कि थानू किस तरह की जानकारी तुसी चाहते है। क्यों रेडियो बिसवानी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, तो bisawani@bisawani.com साडी ईमेल आई डी है। सर जेड़ा भी अपनाना चाहते हो अपनाओ, साडा गलबात जरूर करो। बाकी कल कर दे मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu aaj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: ब्रिजबेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू फॉरेस्ट लेक क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह।

0: का पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: अरे मुन्ना, मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे
4: क्या?

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th October 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज।
7: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachchon ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 04886234599 ya Birendra Singh on 04093905833 ya fir Baba on 04137016 51।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: आई एम योर ओनली एडम।
1: सरगम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइटहाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 पीएम टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत, जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड्ड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुणो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज है थर्सडे और थर्सडे के साथ वही वक्त आ गया है जब हम धीरे धीरे वीकेंड की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, और कल कोई नॉर्मल फ्राइडे नहीं है बल्कि कल फ्राइडे है जन्माष्टमी का, मतलब कृष्ण भगवान आने वाले हैं आप लोगों के घर पे। सो ऑफ कोर्स आई होप आप उसके लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है, हमेशा की तरह प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिचुअल के साथ, और वो रिचुअल है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज का। जी हाँ, एक ऐसी एक्सरसाइज जो हमें हेल्दी, हैप्पी और काम बनाने में हेल्प करती है। जी हाँ, तो सबसे पहले बिना देर किए बात करें

क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ बिना देर किए शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की, और प्रोग्राम की शुरुआत होती है बढ़िया से गाने के साथ। ऑलरेडी बहुत सारी गपशप मैंने आपके लिए प्लान की है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए प्लान की है, बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले गाना एक खूबसूरत सा जो कि उसे एक खूबसूरत सी स्टार्टिंग देने वाला है।

जी दोस्तों, तो दमदार शुरुआत के साथ अब मौसम की तरफ बढ़ा जाए। वेल, गाना बहुत ज्यादा गर्म था और मौसम भी गर्म है। जी हाँ, मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 27.3 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील ऑन द अदर हैंड आपको 26.9 डिग्री सेल्सियस के करीब हो रहा है। जी हाँ, ये है दिन के टेम्परेचर का हाल। रात की बात की जाए तो 14 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे और नो चांसेस ऑफ बारिश। जैसे मैंने कहा था कि सूरज खिला खिला और गर्मी देता हुआ आपको नजर आने वाला है। वेल, स्प्रिंग है और लेट स्प्रिंग है, तो आपको तो पता ही है क्या होगा सिचुएशन। जी हाँ, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एयर क्वालिटी है एकदम फेयर और आज के साथ अब अगले दो दिन की बात भी कर लेते हैं, यानी कि फ्राइडे एंड सैटरडे। सो फ्राइडे की अगर बात की जाए तो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर जाने वाला है। जी हाँ, मैंने आपको कहा था कि फ्राइडे में तापमान बढ़ेगा, काफी बढ़ेगा, और वही मैं देख पा रही हूं। 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड नो चांसेस ऑफ बारिश, खिला खिला हुआ सूरज, यानी कि गर्मी बढ़ाता हुआ सूरज आपको नजर आने वाला है। वही सैटरडे की अगर बात की जाए तो 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है मैक्सिमम, और नो चांसेस ऑफ बारिश, बट थोड़ी बहुत बारिश हो भी सकती है कुछ इलाकों में, क्योंकि 30% चांसेस मुझे दिख रहे हैं। उसके अलावा सूरज अगेन खिला खिला नजर आ रहा है। बेसिकली इस वीकेंड आप बाहर निकलिए, अच्छे से इस लेट स्प्रिंगी फील को एंजॉय कीजिए, बिकॉज गर्मी बढ़ने वाली है आगे चल के। जी हाँ, लेकिन ये दो तीन दिन की बात है, उसके बाद फिर से जो है वो मौसम डाउन जाने वाला है जितना मैं देख पा रही हूँ। सो दो तीन दिन जो ये 31 और 32 और 33 पे जो टेम्परेचर जाने वाला है, उसके बाद गिरावट आप इसमें देख पाएंगे और ये गिरावट आपके लिए बारिश लेकर आने वाली है। सो या बी रेडी फॉर दैट। बट वीकेंड जो है वो बिल्कुल भीगा नहीं है, सूखा सूखा है, तो आप बाहर निकल के पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तों भी अगे

0: समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियाची निविया के साथ। इसी के साथ दोस्तों अब जरा शुरू करते हैं आगे का कार्यक्रम। और आगे के कार्यक्रम में आपको पता ही है सबसे पहली चीज क्या होगी, अब ऑफकोर्स आपकी फरमाइशों के बारे में जिक्र होगा। मतलब ऑफकोर्स आपकी फरमाइशों का जिक्र होगा और साथ में कैसे आप अपनी फरमाइशों को हम तक पहुंचा सकते हैं, मतलब वो गाने जो आपको बहुत पसंद है, बहुत अजीज हैं और आप उन्हें सुनना चाहते हो, आप हमें शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, हमारे लिसनर्स के साथ, हमारे इस प्रोग्राम इवनिंग वाइब में। इनफैक्ट आप किसी को कोई गाना डेडिकेट करके उन्हें स्पेशल फील करवाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज आपको नंबर डायल करना है और वो नंबर है +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमारी तरफ से एक और खूबसूरत सा, लिटरली खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मूवी इंडस्ट्री की डार्क हॉर्स के बारे में बात कर लिया। आप लोग बोलोगे डार्क हॉर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वेल, एक ऐसा घोड़ा जिसपे किसी ने बेट नहीं किया था, लेकिन वो घोड़ा सबसे आगे जाकर जीतता हुआ नजर आ रहा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी हनुमान अंश। जी हाँ, नाउ इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन हमने ज्यादा इसके बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि सच में इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। स्टार्टिंग में जब ये मूवी आई तो ये सिर्फ लाखों में ही कमा पा रही थी और इसका बजट भी ज्यादा नहीं था। जी हाँ, 2 करोड़ से भी कम का बजट था इसका, और इस वजह से लोगों की जो है इससे कोई उम्मीद थी नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने इसे देखा और वर्ड ऑफ माउथ इसका बढ़ा, तो उसी से इसे पसंद किया जाने लगा। अब आलम यह है कि 2 करोड़ से भी कम के बजट में बनी ये मूवी 40 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर चुकी है और अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है। नाउ आप लोग बोलोगे कि ये मूवी क्या है। वेल, ये मूवी है एक कहानी एक व्यक्ति के बारे में जो कि हनुमान जी से रिलेटेड कुछ चीजें जो है वो फील करता है। जी हाँ, आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट फॉर यू, आप खुद देखिए ट्रेलर, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन नो स्पाइडरमैन, नो एनी टॉक्स मूवी, नो नथिंग, बट हनुमान अंश जो हैज बिकम द विनर ऑफ दिस सीजन। जी हाँ, और जैसे मैंने कहा कि ये डिवोशनल मूवी जो है वो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ देख सकते हो, अपने अपनों के साथ देख सकते हो और आप इसे इंजॉय कर सकते हो। आप खुद सोचिए, मतलब ये मूवी ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गई थी, लेकिन फ्लॉप होते होते होते होते सीधा फिर से चली गई। जी हाँ, और ये मूवी है उनके बारे में जिनके बारे में बहुत से लोग बात करते हैं, बड़े बड़े बिलियनर्स भी बात करते हैं। जी हाँ, क्योंकि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स भी इसी जगह पर आकर उन्हें वो सिद्धि मिली थी, उन्हें वो मार्गदर्शन मिला था जिसको वो चाहते थे। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि क्या निव्या, क्या बात कर रही हो, तुमने कहा कि हनुमान जी का अंश या फिर स्टीव जॉब्स क्या है। वेल, आपको तभी पता चलेगा जब आप ट्रेलर देखोगे। ट्रेलर देखिए और खुद डिसाइड कीजिए, बट आई डेफिनेटली वुड रिकमेंड इट टू यू। बाकी चॉइस इज योर्स। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवें घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निबिया के साथ। दोस्तों बायो हैकर ब्रायन जॉनसन के बारे में तो हमने बहुत बार बात की है। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी लॉन्जिटिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी उम्र को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो हेल्दी रहने की कोशिश कर रहा है, वो उन सारी की सारी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है जो कि अभी तक सेट थी कि एक टाइम पे हम बूढ़े होते हैं और एक टाइम पे बूढ़े होने के बाद हमें इस दुनिया से जाना होता है। वेल, ब्रायन जॉनसन का मानना है कि अगर हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे, हम अपनी बॉडी को वो सारी चीजें देते रहेंगे जो उस वक्त उसे जरूरत है, तो हमारी उम्र जो है वो लंबी हो सकती है और लॉन्जिटिविटी जो है वो बढ़ सकती है। अब ब्रायन जॉनसन जो है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं क्योंकि उन्होंने प्रण लिया है कि वो हर साल $2 मिलियन जो है वो अपनी हेल्थ पर खर्च करेंगे। जी हाँ, मतलब वो अपनी एज को स्लो करने के लिए हर साल $2 मिलियन के करीब खर्च करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आप बोलोगे $2 मिलियन जस्ट फॉर लाइक मतलब स्टे यंग? या दैट्स व्हाट ही डज। सो यहां पर उन्होंने एक चीज बोली है। जी हाँ, मतलब अपनी बॉडी से प्लाज्मा निकलवाना, अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीटमेंट्स में डालना जो कि लिटरली उन्हें एज कम करने में हेल्प करेगा, ये तो वो करते ही रहते हैं। लेकिन एक चीज उन्होंने अभी बोली है और वो ये है कि जो मीन पीपल होते हैं, यानी कि जो मीन लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, जो मीन बिहेव करते हैं लोगों के साथ, उनकी एज जल्दी बढ़ती है। जी हाँ, अब ब्रायन जॉनसन ने कहा है तो डेफिनेटली ये सही होगा और सच होगा, क्योंकि ब्रायन जॉनसन इज द ओनली पर्सन जो कि इस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा, इस फील्ड में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। और ऑफकोर्स वो खुद को ही जो है उन्होंने अपना सबसे बड़ा रिसर्च जो है वो बनाया है यहाँ पर। ब्रायन जॉनसन कहते हैं कि जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं या ज्यादा मीन होते हैं या मीन बिहेव करते हैं लोगों के साथ, वो ज्यादा जल्दी एज करते हैं और उनको कार्डियोवास्कुलर यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के खतरे भी जो है वो कहीं ज्यादा होते हैं नॉर्मल लोगों से। और उसका मतलब यही है कि हार्ट स्ट्रोक से डेथ होना या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे हार्ट से रिलेटेड हुए, उनसे जो है इंसान की जल्दी डेथ होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर आप मीन नहीं हो या कोई पर्सन जो है वो मीन नहीं है, वो गुस्सा नहीं करता है, वो सारी की सारी हेल्दी चीजें कर रहा है अपनी लाइफ में और ब्रायन जॉनसन जैसे ट्रीटमेंट्स भी अफोर्ड कर सकता है, तो ब्रायन जॉनसन को लगता है कि वो लंबा जिएंगे। लंबा कितना लंबा, कछुए से लंबा या नहीं वो हमें नहीं पता, बताएंगे इसके। ब्रायन जॉनसन लगे हुए हैं अपनी एज को हराने। जी हाँ, मतलब वो बूढ़ा होने के लिए पूरी तरह मना कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जल्दी नहीं मरने वाला हूं। और उन्होंने कहा है कि मीन लोग जो हैं वो जल्दी बूढ़े होते हैं। सो मुझे लगता है कि हमारी सारी की सारी मीननेस जो है यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि ये गुस्सा जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि एक मिनट का गुस्सा दो घंटे के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को ठप कर देता है। सो यू नो ब्रायन जॉनसन इज नॉट द ओनली पर्सन, साइंटिस्ट ने भी ये कहा है कि गुस्सा अच्छी बात नहीं है, लेकिन मीन होना इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग, एंड दैट्स व्हाट ब्रायन जॉनसन सेड। आई थिंक इट्स अ विजडम फॉर द टुडे। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, कल ही के बाद है मैं सोशल मीडिया चला रही थी और सोशल मीडिया चलाते चलाते मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने एक मीम आता है जिसमें एक कोबी बेरा यानी कैबी बोरा कोबी बेरा आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, लेकिन कोबी बेरा जो है वो वहां पर डांस कर रहा था और बड़े ही क्यूटली वो डांस कर रहा था। और उसमें मीम में जो लिखा हुआ था वो बड़े ही ध्यान से मैंने पढ़ा और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कितनी सेंस बनाती है ना ये चीज, कितनी सेंस। तो वहां पर लिखा हुआ था कि आई रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू डाइट। जी हाँ, उसमें लिखा हुआ था आई रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू डाइट, हाफ एन एग इन द मॉर्निंग, हाफ एन एप्पल फॉर लंच, हाफ द फ्रिज एट नाइट। जी आप लोग बोलो है? निवा शर्मा एक बार फिर से रिपीट करोगे क्या कहा तुमने? जी उसमें लिखा हुआ था आई रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू डाइट, हाफ एन एग इन द मॉर्निंग, हाफ एन एप्पल फॉर लंच, और ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से जा रहा था। लेकिन शाम का जब वक्त आया यानी कि रात का जब वक्त आया तो उसमें लिखा हुआ था कि हाफ द फ्रिज एट नाइट, मतलब सुबह आपने अपनी डाइट को पूरी मशक्कत के साथ, पूरी मतलब पूरी शिद्दत के साथ आपने उसे पूरा किया, दोपहर को भी आपने पूरी शिद्दत दिखाई अपनी डाइट में क्योंकि यू वो ना डाइट, बट रात को आपने पूरा आधा फ्रिज खा लिया, मतलब आधा ही खाया है, पूरा नहीं खाया, सब कुछ आधा आधा चल रहा था तो रात को आधा फ्रिज खा लिया। अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि पूरा नहीं खाया है कुछ भी, आधा एग सुबह, आधा एप्पल दोपहर को और आधा फ्रिज रात को, तो सब कुछ आधा आधा ही है। मुझे नहीं लगता मैंने डाइट में कुछ भी गड़बड़ की है, या ये लिखा हुआ था वहां पे, एंड आई एम लाइक या दैट्स व्हाट पीपल डू नाउअडेज बिकॉज वी लव चीटिंग सो मच कि हम अपनी डाइट के साथ भी उतनी ही चीटिंग करते हैं जितनी कि हम अपने स्कूल के टाइम में करते थे। जी हाँ, सो आप मुझे बताइए क्या आपको भी ऐसे ख्याल आते हैं रात को कि ओके यार सुबह कर ली डाइट, दोपहर को कर ली, अब मजे से सब कुछ खा ही लेता हूं। जी हाँ, अगर आपको ये ख्याल आते तो जरूर मुझे बताइएगा क्योंकि मुझे डेफिनेटली ऐसे ही ख्याल आते हैं। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

क्विक चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू फॉरेस्ट लेक क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में

0: मदद कर सकती हैं और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
0: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
4: दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ आज दो सेलिब्रिटीज का जन्मदिन है जिनको मैं बर्थडे विश यहां पर करने वाली हूं। सबसे पहले तो विवेक ओबेरॉय, जो कि काफी टाइम तक बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन अब वो बिजनेस वर्ल्ड में ज्यादा सक्रिय है और बहुत सारे पैसे वो छाप रहे हैं। वो बहुत अमीर बिजनेसमैन में माने जाते हैं, मतलब फिल्मों से निकल के बिजनेस की दुनिया में एलीट बन जाना, दैट्स वन ऑफ अ काइंड थिंग, राइट? सो विवेक ओबेरॉय को सबसे पहले हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और हम यही कहेंगे ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही पैसे से भरा रहे, अच्छी हेल्थ, बहुत सारी वेल्थ और बहुत सारी खुशियां, यही हम विश करते हैं। जी हाँ, लेकिन एक इनके साथ ही एक और बहुत ही बड़ी शख्सियत का जन्मदिन है जिन्होंने हमें एंटरटेन किया है सालों से, एंड व्हेन आई से सालों से आई मीन इट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट शक्ति कपूर। जी हाँ, शक्ति कपूर। और शक्ति कपूर ने आपको कितना एंटरटेन किया है मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शक्ति कपूर की आपकी वो कौन सी फेवरेट मूवी है जिसमें शक्ति कपूर है और आपको शक्ति कपूर का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दे लेते हैं। जन्मदिन की मुबारकबाद शक्ति कपूर साहब आपको हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिजवानी की तरफ से। और कहेंगे कि जो आपकी विलनगिरी है, जो आपकी वो ह्यूमरस अदा है, उसको हमेशा बरकरार रखिए। आई नो आप फिल्मों में अब ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप आ सकते हैं तो जरूर आइए, क्योंकि आपके फैंस आपको याद करते हैं। एंड या ये साल आपके लिए खुशियों से भरा रहे, अच्छी हेल्थ, बहुत सारी वेल्थ, यही हम आपको विश कर रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अब काला चश्मा पहनने का वक्त आ गया, क्योंकि धूप इतनी है भाई, धूप इतनी है तो काला चश्मा तो पहनना पड़ेगा, राइट?

0: हम भी यहाँ।
1: जी हाँ दोस्त, इसके साथ खलबली कहीं भी होनी चाहिए, बस पेट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेट की खलबली गड़बड़ कर सकती है। और अगर कहीं हम बाहर मजे कर रहे हो, घूम रहे हो, और फिर खलबली हो जाए वो भी पेट में, फिर तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, यू नो व्हाट आई मीन। जी हाँ, इसी के साथ अब जरा चलते हैं, थोड़ा सीरियस होने का वक्त हो गया है, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला शुरू हो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना है, खबरों के बारे में बात हम करने वाले हैं। क्या हो रहा है खबरों की दुनिया में, उसके बारे में बात होगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेपाल से। नेपाल बाढ़ में अब तक करीब 12,000 लोग बचाए गए, 4,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। जी हाँ, नेपाल की सरकारी एजेंसियों के मुताबिक भोटे, कोशी और त्रिशूली नदियों में आई विनाशकारी बाढ़ के 8 दिन बाद बुधवार शाम तक 11,993 लोगों को बचाया जा चुका था। हालांकि बुधवार शाम तक के आंकड़े के मुताबिक 4,216 लोग अभी भी संपर्क नहीं उनसे कर पाया गया है। जी हां, नेपाल की बाढ़ में मरने वालों की संख्या अब 1200 से ऊपर पहुंच चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि लापता लोगों की तलाश को प्राथमिकता दी जा रही है। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की प्रवक्ता शांति महत ने नेपाल की सरकारी समाचार एजेंसी आरएसएस को बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के कुल 21,314 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। खोज और बचाव अभियान में नेपाल पुलिस के 7,912 सशस्त्र पुलिस बल के 4,203 और नेपाल सेना के 9,199 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। सुरक्षा कर्मी नदी के किनारों, बाढ़ प्रभावित बस्तियों, सड़कों और भूस्खलन प्रभावित इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा एजेंसी के मुताबिक बाढ़ के बाद नेपाल सेना के 45, नेपाल पुलिस के 25 और सशस्त्र पुलिस बल के 13 सदस्य भी यहां पर लापता हो गए हैं।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और इंडोनेशिया में धधके जंगल, धुंध और धुएं से भरा आसमान, हजारों अस्पताल में भर्ती। इंडोनेशिया के कुछ इलाकों के जंगलों में आग लग गई है। इनमें से कुछ जंगलों में आग पिछले कई हफ्तों से लगी हुई है। देश के सुमात्रा और कलिमंतान के इलाके धुएं और धुंध से भर गए हैं। यहां लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। ये दोनों इलाके बोर्नियो द्वीप में हैं। इंडोनेशिया में हजारों लोग धुएं और धुंध की वजह से सांस की बीमारी का इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती है। देश में क्लाउड सीडिंग और फायर फाइटिंग विमानों से आग बुझाने की कोशिश जारी है। इंडोनेशिया के पड़ोसी देश मलेशिया और फिलीपींस में आग लगने से आसमान में धुंध की परत भी आई हुई है। अब पैसिफिक में भी ये चीज देखने को मिल रही है। इससे पहले यूरोप जो है इससे परेशान था, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं परेशान है। और ऐसे में जंगलों में आग लगना जो है एक बहुत ही बड़ी आपदा बनकर इस बार सामने आया है।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन. au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
13: सांसों की माला पे सिमरूं मैं.
14: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए. म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30th October 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम. Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, खबरों की बात हो रही है और वहीं सऊदी अरब का दावा, ईरान ने उसके तेल टैंकर पर किया हमला, फिलीपींस के दो नाविकों की मौत। जी हाँ, सऊदी अरब ने सोमवार रात अपने एक बड़े तेल टैंकर पर ईरान की ओर से किए गए कथित हमले की निंदा की है। इस हमले में फिलीपींस के दो नाविकों की मौत हो गई। सऊदी अरब की राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी बाहरी ने बुधवार को पुष्टि की कि उसके सिद्र नाम के एक जहाज के साथ ये घटना घटी। समुद्री सुरक्षा कंपनियों के मुताबिक ओमान के मुनसंदम प्रायद्वीप के उत्तर में सिद्र पर कुछ प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इसी दौरान दक्षिण कोरिया के एक बड़े तेल टैंकर सेनेगल प्रॉस्पेरिटी को भी मुसंदम के पूर्व में निशाना बनाए जाने की खबर है। सऊदी अरब के इस आरोप पर ईरान की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि इससे पहले ईरान ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय दो टैंकरों में बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद आग लग गई। ईरान के मुताबिक ये टैंकर एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे जिसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी। नाविकों की मौत की खबर ऐसे समय आई है जब अमेरिकी सेना ने ईरान पर हवाई हमले शुरू किए हैं। इसके जवाब में ईरानी सेना ने पड़ोसी अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला भी किया है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर ईरान ने भी दावा किया है। ईरान ने बताया कि अमेरिकी हमलों में मौतों की संख्या 18 पहुंची, 142 लोग घायल हो गए हैं। जी हाँ, जो सिलसिला हमें लग रहा था कि रुक गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, वो फिर से शुरू हो गया है। जी हाँ, ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के जनसंपर्क निदेशक हुसैन करमानपुर ने मंगलवार को हुए अमेरिकी हवाई हमलों में हुई मौतों और घायलों के नए आंकड़े जारी किए हैं। बीबीसी की फारसी सेवा के मुताबिक करमानपुर ने बताया कि इन हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 18 और घायलों की संख्या 142 हो गई है। मृतकों में एक बच्चा और दो महिलाएं शामिल हैं। घायलों में 61 महिलाएं और 18 वर्ष के से कम उम्र के 44 लोग शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान पर कई हफ्तों के बाद दोबारा हमला शुरू किया है। बुधवार को ईरान के सिरिक में एक शादी समारोह में हुए हमले में शुरू में 4 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। ईरानी रेड क्रिसेंट ने बताया था कि सिरिक में एक शादी समारोह के दौरान एक घर पर अमेरिकी मिसाइल के टुकड़े गिरने से 4 लोगों की मौत भी हुई है।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
4: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
5: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
4: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
5: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
6: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
7: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
6: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
7: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
6: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
7: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
8: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
9: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
10: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नीवा के साथ। दोस्तों मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अजीबो गरीब चीजें भी हैं जो हमें ऐसा फील करवाती है कि ओ पर हमें क्या इसकी जरूरत थी भी। बट ये क्वेश्चन का आंसर अब आपको मैं देने वाली हूँ, क्योंकि एक नया टूथब्रश जो है वो मार्केट में आया है जो कि कॉस्ट करता है $500। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि $500 फॉर अ टूथब्रश, लाइक व्हाट काइंड ऑफ टूथब्रश इज दिस? जी हाँ, कैसा टूथब्रश है ये, क्या इसमें भी AI डाल दिया इसने? जी हाँ, वेल टू आंसर योर क्वेश्चन, या It has AI in it. जी हाँ, so basically ये इसमें AI है और इसमें एक कैमरा भी है। आप लोग बोलोगे एलो जी, टूथब्रश में अब टूथब्रश वाला काम नहीं हो रहा है, इसमें कैमरे डाले जा रहे हैं, इसमें AI डाला जा रहा है। वेल टूथब्रश का काम करेगा, लेकिन उसका जो कैमरा है, जब आप अपने टीथ को ब्रश कर रहे होगे तो वो कैमरा जो है वो आपको रियल टाइम फुटेज देगा आपके दांतों की, और वो रियल टाइम फुटेज आपको दिखेगी अपने फोन में। जी हाँ, ताकि आपको जहां भी ब्रश करने की जरूरत है आप उस कैमरा में देख के वहां पर कर सकते हो। और रुक जाइए, अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर इस टूथब्रश में एक छेद भी है जिससे कि पानी स्प्रे होगा। अब आई डोंट नो कि आप कितना फ्लॉस करते हो, लेकिन अगर आप फ्लॉस करते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये टूथब्रश आपके लिए वो भी करेगा। जी हाँ, मतलब वो आपके लिए लिटरली जहां पर आपको फ्लॉस करने की जरूरत होगी वो आपके लिए पानी स्प्रे करेगा व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा इतना कुछ दे दिया तो $500 मेक सेंस। अरे काहे का मेक सेंस, लाइक डू वी नीड दिस? नो वी डोंट। हमारे टूथब्रश जो है, जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब ठीक है, वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन क्या हमें इतना अच्छा काम करवाने की जरूरत है? क्या हम ये लटरम पटरम सारी चीजें अपने टूथब्रश में डालने के लिए रेडी है? वेल, आप नहीं हो, लेकिन कंपनियां हैं, और उन्होंने एक ऐसा टूथब्रश उतार दिया है, एक ऐसा टूथब्रश जिसमें AI है, जिसमें कैमरा है, जो खुद फ्लॉस करता है आपके दांतों में व्हेनेवर इट नीड्स टू बी, एंड या इट कैन डू ऑल द वर्क फॉर यू। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, अपना काम करने के लिए हमारे पास हाथ है, हमको नहीं जरूरत है किसी AI, किसी कैमरे की, किसी फ्लॉ मशीन की। जी हाँ, चलिए ठीक है, अगर आप ऐसा मानते तो ये भी ठीक है। जी, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

अमा इश्क में करे और इसी के साथ जैसे कि मैंने कहा कि कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी। आप लोग बोलोगे निवेश शर्मा कल ही की बात क्यों होती है, पिछले कल की भी हो सकती है, आज की भी हो सकती है, या पिछले से पिछले कल की भी हो सकती है। अरे अरे ये ऐसे ही होता है, बस जो भी होता है ऐसे ही होता है। जी हाँ, कल ही की बात होती है, बस दैट्स इट। सो कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर मेरे सामने एक मीम आता है और वहां पर लिखा होता है, लेकिन ये चीज रियल है, मतलब ऐसा रियल में हुआ है कंपनीज के साथ। और ऐसा लोग कहा जाता है कि लोगों को, मतलब जो भी इम्प्लॉयज होते हैं कंपनीज में, उनको कोई भी ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना है जो उनकी ईमेल आईडीज पे आए, जो कि क्लेम करता है कि आपको 17 आईफोन 17 प्रो या आईफोन दिस दैट ऑल दैट जैज जो है वो फ्री में मिल रहा है। और उस पर क्लिक करने के बाद कंपनी का सारा डाटा जो है वो रफू चक्कर हो जाता है, भगवान भरोसे हो जाता है। जी हाँ, तो उसमें यही लिखा हुआ था कि मैनेजर कह रहा है अपने इम्प्लॉयज से, आर सर्वर्स डाउन, वी लॉस्ट ऑल आवर डाटा। और वहीं पर वो जो एम्प्लॉय है वो एक दूसरे को देख रहे हैं, जिन्होंने लिटरली एक ईमेल ओपन कर ली थी जहां पर उनको ये दिख रहा था कि वो जीत चुके हैं आईफोन 17 प्रो, और बस उस लिंक पे क्लिक करके उनको वो आईफोन मिल जाएगा, जो कि कभी भी वो लिंक रियल था ही नहीं, इट वॉज अ फेक लिंक, इट वॉज वायरस, एंड दैट्स हाउ कंपनी लॉस्ट ऑल इट्स डाटा। जी हाँ, तो यू नो व्हाट द फनी थिंग इज कि कंपनीज जो है अब साइबर सिक्योरिटी क्लासेस जो है वो देती है अपने एम्प्लॉयज को, ताकि उनके जो एम्प्लॉयज हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, वो कोई भी ऐसी कोई फनी हरकत ना कर दे जिसकी वजह से कंपनी का सारा डाटा जो है वो भगवान भरोसे और तोते और कौए उड़ा के ले जाएं, लिटरली, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस। और ये बहुत बार हुआ है। सो आप मुझे बताइए कि आपकी कंपनी में भी कभी ऐसा हुआ है किसी एम्प्लॉय की वजह से सारी डाटा जो है वो उड़ता हुआ आपको नजर आया हो। जी हाँ, क्योंकि ऐसा होता है, लेकिन कंपनी साइबर सिक्योरिटी क्लासेस देती है लिटरली सबको कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई तुमको लालच देगा 17 प्रो आईमैक दिस दैट ऑल दैट जैज, लिंक पे क्लिक नहीं करना है, वो तुमको झूठ बोल रहे हैं, वो तुमको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिखता है वो नहीं है, बुलाता है मगर जाने का नहीं है। जी हाँ, दैट्स व्हाट कंपनी सेज। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, जो कि शुरू हो रहा है और इस सेगमेंट को खास बनाता है इसका वो थीम जिसमें हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पुराने गाने प्ले करते हैं, मतलब पुराने गानों की महफिल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, पुराने गाने पुराने किस्से शुरू हो रहे हैं, आप भी सवार हो जाइए इस सफर में जल्दी से। और इसी के साथ जो पहला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो है बहुत ही खूबसूरत गाना और इसका नाम है ओ मेरे सोना रे सो। नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं गा नहीं रही हूँ। इससे पहले आप मुझे बोलो निव्या शर्मा डोंट सिंग, ठीक है, नहीं गाती, डोंट वरी। सो ये गाना है आप सबके लिए, ओ मेरे सोना रे सोना। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और भी बातें।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक वक्त था जब देवानंद साहब, राज कपूर और दिलीप साहब फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया करते थे। जी हाँ, ये वही वक्त था जब ये तिकड़ी जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाती थी। मतलब राज कपूर साहब की वो खतरनाक सी एक्टिंग, देवानंद साहब की वो अदाएं और दिलीप साहब का वो ट्रेजिक हीरो का वो आलम, लोग उस वक्त को कभी भी नहीं भुला सकते। अब ऐसे में एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा है, जब धर्मेंद्र जी यानी कि द ही मैन ऑफ बॉलीवुड जब वो पिक्चरों में आने की कोशिश कर रहे थे तो वो एक ऑडिशन में गए थे। जी हाँ, वो ऑडिशन में गए थे और उस ऑडिशन को करने के लिए हजारों लोग वहां पर आए हुए थे। एक पूरी की पूरी बड़ी लंबी सी लाइन लगी हुई थी। अब वो नर्वस थे, उन्हें लग रहा था कि इतने सारे लोगों में मेरा चयन होगा या नहीं होगा, और वो इसे ख्यालात में खोए हुए थे। और एकदम से पीछे से कोई उनके कंधे पर हाथ रखता है। जी हाँ, ये हाथ वो देखते हैं और फिर पीछे मुड़कर जब वो देखते हैं कि कौन है जिसने उनके कंधे पर हाथ रखा है, तो वो देखते हैं सामने देवानंद साहब खड़े हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिनकी पिक्चरें देखकर आप बड़े होते हैं और एक बार आप किसी लाइन में लगे हों और एकदम से वही इंसान, वही शख्स, वो फेमस सेलिब्रिटी आपके सामने आ जाए, आपका आलम क्या होगा, मतलब आपका, आप कैसा फील करोगे? वेल, दैट्स हाउ ही फेल्ट। जी हाँ, देवानंद साहब ने उनकी तरफ देखा, उनको कहा कि तुम अच्छे दिखते हो और मुझे पक्का पता है कि तुम काम भी अच्छा करोगे। डोंट वरी, नर्वस मत फील करो, तुम्हें ये रोल पक्का मिलेगा, तुम्हें काम पक्का मिलेगा। जी हाँ, इसी के साथ धर्मेंद्र जी ने जब ये सुना, he was like, वाह, मतलब इतना ज्यादा रीअश्योर करने वाला व्यक्ति कहाँ मिलता है। जी हाँ, लेकिन ये सिर्फ धर्मेंद्र जी के साथ नहीं हुआ है, देवानंद साहब ने और भी लोगों के साथ ये किया है। जी हाँ, क्योंकि देवानंद साहब वो सो पॉजिटिव, ही वॉज वेरी वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन, जो कि किसी को भी जो है वो चेयर अप करने में पीछे नहीं रहते थे। अदरवाइज आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे, बट उनमें बहुत ज्यादा ईगो थी। बट देवानंद साहब वॉजंट लाइक दैट। इनफैक्ट ये किस्सा यहीं खत्म नहीं होता है, फिर वो धर्मेंद्र जी को अपने साथ खाना खाने के लिए भी इन्वाइट करते हैं। जी हाँ, अब धर्मेंद्र जी जब उनके साथ खाना खाते हैं तो शायद देवानंद साहब के लिए एक छोटा सा किस्सा था और वो भूल भी गए होते, लेकिन धर्मेंद्र को हमेशा ये चीज याद रहती है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, कुछ गाने ना आपको लिटरली अलग अलग इमोशंस में, मतलब दिल के उन गलियों में ले जाते हैं जिनको शायद आपने पहले देखा भी नहीं होगा। जी हाँ, सो ये गाना कुछ ऐसा ही है, ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते। बात तो सही है भाई, ऐसे कैसे किसी के ख्यालों में आ सकते हो आप, उनसे आपने परमिशन ली है। लेकिन ख्यालों में कोई आता है, इसकी परमिशन तो किसी को लेनी ही नहीं पड़ती, और ये हमेशा से ऐसे ही होता है। जी हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों कि कैसे धर्मेंद्र, जो कि पिक्चरों में आने की कोशिश कर रहे थे, ऑडिशन में गए थे, देवानंद साहब से मुलाकात होती है और वो मुलाकात उनकी जिंदगी को जो है वो बदल देती है। अब जितना मैंने आपको बताया था वहीं पर बात खत्म नहीं होती है। जब देवानंद साहब धर्मेंद्र को अपने साथ खाना खाने के लिए इन्वाइट करते हैं तो धर्मेंद्र उनके साथ खाना खाते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो धर्मेंद्र को पानी पीना होता है और वो उठकर पानी लेने के लिए जाने लगते हैं तो देवानंद साहब उन्हें रोक देते हैं। जी हाँ, देवानंद साहब उन्हें बिठाते हैं और उन्हें अपने आइस बॉक्स में से निकालकर पानी की बॉटल देते हैं। अब धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में पहली बार आइस बॉक्स देखा था उस वक्त। जी हाँ, और वो पानी, वैसा पानी भी उन्होंने पहली बार पिया था। इसके बाद धर्मेंद्र अपने घर चले जाते हैं और रात को वो सोने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। उनके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ देवानंद साहब आ रहे होते हैं और उनकी ह्यूमैनिटी और उनकी वो प्यारा सा जेस्चर उनके दिमाग में आ रहा था कि कैसे इतना ज्यादा पॉपुलर इंसान, इतना ज्यादा सक्सेसफुल इंसान कैसे इतना हम्बल हो सकता है। बस फिर क्या, उसी वक्त उन्होंने ठान लिया था कि वो जरूर और बहुत ही ज्यादा जल्दी काम करेंगे देवानंद साहब के साथ। समय बीता, ही मैन ऑफ बॉलीवुड धर्मेंद्र बन गए और उसके बाद उनकी ये ख्वाहिश जो है वो भी उनके दिल में तब भी थी। फिर क्या था, उन्होंने कोशिश की 1989 में, जो कि देवानंद साहब के भाई बना रहे थे एक पिक्चर जिसमें देवानंद साहब के भी काम करने की उम्मीद थी लेकिन वो हो नहीं पाया और उसमें वो देवानंद साहब के साथ काम नहीं कर पाया। उन्हें लगा था कि उस वक्त अब वो उनका सपना जो है वो पूरा हो जाएगा, कि अब उन्हें वो मौका जो है वो मिलने वाला है जिसका सपना उन्होंने इतने सालों से देखा है, लेकिन उस वक्त वो मटीरियलाइज नहीं हो पाया। वक्त और आगे बढ़ा और 1996 में फाइनली वो वक्त आ गया है जिसका सपना धर्मेंद्र ने अपने करियर की स्टार्टिंग से देखा था और वो था देवानंद साहब के साथ स्क्रीन शेयर करना। 1996 में रिटर्न ऑफ द ज्वेल थीफ में उन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम किया और उस सपने को साकार भी किया। इसलिए कहते हैं सपने देखिए, सपने पूरे जरूर होते हैं लेकिन आपको उनके लिए काम भी करना पड़ता है। सो सपने देखना और मेहनत, जब दोनों इकट्ठे काम करती हैं तभी आप सक्सेसफुल होते हैं और तभी वो चीजें भी आपको मिलती हैं जिनको आप मैनिफेस्ट करते हो बहुत ही ज्यादा शिद्दत से। इसी के साथ एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे अब। कल फ्राइडे है और कल सिर्फ नॉर्मल फ्राइडे नहीं है, कल कान्हा जी आपके घर में भी आने वाले हैं, यानी कि कल है कृष्ण जन्माष्टमी। और ऑफकोर्स वी गोना टॉक अबाउट इट, सो लेट्स जस्ट लीव इट टू दैट। यहाँ पर अब आपसे विदा लेने का वक्त हो रहा है, जा रहे हैं हम अब। बाय, सी यू, टाटा। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। और ये खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

गिरता गिरता गिरता जी, गिरता जी।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: क्या कहा?

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन फेस्टिवल रिवर फायर की तैयारियां शुरू। ब्रिस्बेन शहर के सबसे बड़े और पसंदीदा फेस्टिवल रिवर फायर का रोमांच शुरू हो गया है। इस बार इसे और भव्य बनाने के लिए ब्रिस्बेन नदी पर छठा आतिशबाजी का बजरा लगाया गया है। कल से शुरू हो रहे इस 3 हफ्ते लंबे सांस्कृतिक कार्यक्रम में लाखों लोग जुटेंगे। वहीं रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट रिहर्सल। जी हां, ब्रिस्बेन के आसमान में आज सुपर हॉर्नेट और ग्लोब मास्टर लड़ाकू विमानों की दहाड़ सुनाई दी। रिवर फायर इवेंट की तैयारी के तहत ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना ने आज और कल के लिए एयर शो की रिहर्सल फ्लाई शुरू कर दी है। वहीं ब्रिस्बेन में यूथ इंसर्च की लीडरशिप समारोह। ब्रिस्बेन के ग्रैंड ऑन एन में आज यूथ इंसर्च 2026 लीडरशिप ग्रेजुएशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उन युवाओं को सम्मानित किया गया जिन्हें कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपने समुदाय में मेंटर और लीडर बनने की ट्रेनिंग पूरी की है। वहीं नेवी के 125 साल किंग जॉर्ज स्क्वायर पर खास सेरेमनी। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर आज ब्रिस्बेन के किंग जॉर्ज स्क्वायर पर पारंपरिक सूर्यास्त समारोह आयोजित किया गया। इसके साथ फेस्टिवल के लिए अतिरिक्त बसों और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम। ब्रिस्बेन में होने वाले बड़े आयोजनों को देखते हुए सिटी काउंसिल ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खास प्लान जारी किया है। साउथ बैंक और सीबीडी इलाकों के लिए विशेष शटल बसें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ब्रिस्बेन में मौसम भी गर्माहट भरा बना हुआ है। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले चेन्नई में बनेगी नई ओलंपिक सिटी। तमिलनाडु सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार चेन्नई में एक वर्ल्ड क्लास ओलंपिक सिटी और मोटर स्पोर्ट सिटी बनाने जा रही है। इसका मकसद राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इसके साथ श्री राम मंदिर ट्रस्ट को मिले नए सीईओ। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के लिए एक बड़ी खबर है। एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ बनाया गया है। वहीं इसरो का नया अर्थ सैटेलाइट लॉन्च। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कल सुबह श्री हरिकोटा से अपना नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-05 लॉन्च करने जा रहा है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट में तमिल भाषा का मुद्दा। तमिलनाडु विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है। इसमें केंद्र सरकार से मांग की गई है कि मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य कामकाजी भाषा के रूप में तमिल को मान्यता दी जाए। वहीं दक्षिण भारत में ईडी की बड़ी छापेमारी। ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज एक बड़ा एक्शन लिया है। दक्षिण भारत के 4 अलग अलग राज्यों के एक साथ करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं यूपी के कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी के निशान को पार कर गई है, जिसके चलते नावों की आवाजाही रोक दी गई है। इसके साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही। पड़ोसी देश नेपाल में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण वहां 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग लापता हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान तनाव। मिडल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। वहीं G20 सम्मेलन में AI गाइडलाइंस पर सहमति। दुनिया के प्रमुख देशों के संगठन G20 ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों के इस्तेमाल के लिए कुछ ढीले ढाले लाइट टच और आसान नियमों का समर्थन किया है। वहीं 205 साल पुरानी मैगजीन का प्रिंट एडिशन बंद। अमेरिका की मशहूर ऐतिहासिक पत्रिका सेट्रेड सैटरडे इवनिंग पोस्ट ने प्रिंट एडिशन बंद करने का फैसला लिया है। साल 1821 से छप रही ये मैगजीन 205 सालों के सफर के बाद अब सिर्फ डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही उपलब्ध होगी। वहीं राइड शेयरिंग ऐप उबर करेगी छंटनी। ग्लोबल कैब सर्विस कंपनी उबर अपने मैनेजमेंट लेयर्स को कम करने के लिए दुनिया भर में करीब 10% कर्मचारियों को निकालने की तैयारी कर रही है। इस फैसले से कंपनी के लगभग 3,300 मैनेजर्स और स्टाफ प्रभावित होंगे। इसके साथ अमेरिकी कोर्ट ने दिया नागरिकता कानून पर फैसला। अमेरिका की एक अदालत ने नवजात बच्चों की जन्म सिद्धि नागरिकता पर रोक लगाने वाले नए आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। जज का कहना है कि यह नीति कानूनी रूप से सही नहीं है, जिसके बाद अब इस पर कानूनी बहस छिड़ गई है। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 अब भारत में। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। पहली बार आयोजित होने वाली महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की मेजबानी अब श्रीलंका के बजाय भारत करेगा। वहीं एशियन गेम 2026 के लिए भारतीय दल को मंजूरी। जापान के नागोया में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए खेल मंत्रालय ने भारतीय दल को अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं चेस वर्ल्ड कप 2025 का ऐतिहासिक लम्हा यादगार बना। जी हाँ, वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्हें एक खास तोहफा दिया। उन्होंने गोवा में हुए वर्ल्ड कप 2025 में उज्बेक खिलाड़ी जावोखर सिंदारोव की जीत की असली हेड रिटर्न स्कोरशीट भेंट की। इसके साथ पैरालंपिक और एथलेटिक्स कैंप्स की शुरुआत। आगामी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए बैंगलोर के एसएआई सेंटर में राष्ट्रीय ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गया है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Saleen Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Saleen Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413701
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. the one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Ridwin, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026, फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117. अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें. एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है. 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री. इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.
2: Sargun Music Academy presents a musical tribute to celebrate the timeless classics of Mahmood Rafi and Asha Bhosle on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 PM onwards. For tickets, contact 04227.

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

क्विक चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्विंसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 04886234459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 04093905833 या फिर बाबा ऑन 04137016 51।

से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

हमने बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दो

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026, फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117. अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें. एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है. 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री. इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.

0: स्विट्जरलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ महमूद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइटहाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हो जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.0 FM ते जी आर 6 संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असीं ढेर सारिया थोड़े नाल थोड़ियां मेरिया अपनिया सब दियां कुछ यादां ताज़ियां कर लवांगे, कुछ किसे दियां गल्लां कर लवांगे, कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद मेरी पसंद सब पसंद रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है। तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिसोनी 101 FM साडे फेसबुक पेज है जी। बिसोनी @bisoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा भी तुहानूं चंगा लगदा है वो अपनाओ, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वन सन वन एम ते जी आर जी संदेश अलग दिन से बने हुए। देखो फिल्मा दे हिट या फ्लॉप होने का हिसाब रखते हूं तुहानू इस नाल जुड़े कुछ टर्म्स अते इसका गणित जरूर पता होना है, जिवें ब्लॉकबस्टर अते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच की फर्क हुंदा है, स्लीपर हिट की हुंदा है, नहीं पता तो चलो इसे ते चर्चा कर लेने हैं। तो देखो जेकर तुहाडे दिमाग विच फिल्मी कीड़ा हैगा है तां बॉक्स ऑफिस दे नाल जुड़े सवाल परेशान करते होणगे, जिवें ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच फर्क, फुटफॉल की हुंदा है, किवें तय हुंदा है कि फिल्म हिट है या एवरेज है, स्लीपर हिट की हुंदी है, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। जेकर तुसी भी अपना फिल्मी जी के अपडेट करना चाहते है क्यों तो हुण मैं थोनू इहो जिहे गल्लां दसन लगूंगी जानी हैगी है ना, जिन्हां नूं जान के तुसी कहोगे कि सच्ची इस तरह भी हुंदा है। सच्ची हुंदा है दस दिओ उस बारे, पर पहलां तुसी सुन लो एक गीत।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट MC's फूड्स इन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट MC'sFoods.com.au। 1/268

0: It's a movement. It's a mentality. It's a lifestyle. It's Ninja Nation.
1: बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाने वंसर वाले एम ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल सी बने हुए हो। देखो सब तो पहला गल करते हैं फिल्म दे बजट दी। दा देखो किसी मूवी दा बजट उसके हिट या फ्लॉप होने दे पैमाने दा सब तो वड्डा फैक्टर हुंदा है। फिल्म दी कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी हुंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल हुंदे ने जिवें एक्टर्स दी फीस, क्रू, सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट्स, ते इस विच ओ खर्च आउंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च हुंदा हुंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय हुंदा है हिट या फ्लॉप, इही दसदे आं। पापी लैगी सुणो।
2: It's Black Flyers.

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रह्मवाणी 101.9 FM ते जी आरजे संदेश अलग दे नाल सी बने होए। हुण जिवें तुहानूं पहलां दस्सिया सी ना कि किवें तो तय हुंदा है कि फिल्म हिट हैगी है या फ्लॉप, यही तो जानना सब तो ज्यादा जरूरी है। तो डिजास्टर तो शुरुआत कर लीए। चलो डिजास्टर तो करते हैं। तो देखो डिजास्टर फिल्म केड़ी हुंदी है, जिहड़ी फिल्म अपनी लागत का 50% भी नहीं कमा पाती ना, 50% भी हाफ भी कमाई नहीं कर पाती, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ बनी है 50 लाख भी ना कमाई कर सके तो वह डिजास्टर होंगी है। फ्लॉप फिल्म अपने बजट तो घट कमाई करती है कि वह फ्लॉप होंगी है। तो एवरेज फिल्म कि होंगी है, एवरेज होंगी है फिल्म अपनी लागत क्ड लेंदी हैगी मामूली मुनाफा कमाती हैगी, यानी कि 1 करोड़ बनी हैगी 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ उसने कमाई कर ली है ना। हिट अपनी लागत तो घट 50% तो ज्यादा का मुनाफा, जिवें 1 करोड़ बनी है तो 1.5 करोड़ तो उपर दी जे कमाई कर ले तो हिट हुंदी है। तो सुपर हिट यह फिल्म अपनी लागत तो दुगनी कमाई करती है तो वह सुपर हिट हुंदी है। तो ब्लॉकबस्टर फिल्म फिल्म अपनी लागत तो 3 गुणा या उस तो भी ज्यादा की कमाई कर ले ब्लॉकबस्टर हो जाती है। तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म वो ये होंगी है, फिल्म पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे लागत तो 4-5 गुणा की ज्यादा कमाई करेगी।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा
1: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए इस तो बाद हुण आपां गल करदे आं नॉन थिएटरिकल कमाई दी। अजकल फिल्मां रिलीज होने तो पहला ही पैसा कमा लैंदियां ने, एक प्रॉफिट राइट्स बेच के मिलता है जिवें सैटेलाइट राइट्स, इस जो चैनल से राइट्स लैंदे ने या वो मूवी दिखाते रहते हैं, डिजिटल राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मूवी बेची जाती है, म्यूजिकल राइट्स गाने तो कमाई होती है, फिर होंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखो कई बार फिल्म ना बॉक्स ऑफिस से कमाई के मामले में एवरेज होंगी है, पर इन राइट्स की वजह ना प्रोड्यूसर्स मुनाफा कमा लेंगे ने, पर मूवी के हिट फ्लॉप या एवरेज होने का वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस कमाई के हिसाब न ही तय होंगे।

हाँ जी, तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो दसवाणी वन सर वन दे जी आर जी संदेश अलग दिन बने हुए हूँ। देखो फुटबॉल क्यों होंदा इस दे विच महत्वपूर्ण, इस बारे भी गल कर लेने, इंपोर्टेंट क्यों होंदा। ता कमाई तो इलावा ना एक होर अहम पैमाना हुंदा ओही हुंदा है फुटफॉल, यानी कि किन्ने लोगों ने टिकट खरीदी हैगी है। मूवी दे टिकट अजकल महंगे हो गए ने, इसलिए 100 करोड़ रुपए कमाना सौखा हो गया। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनन दे लई ए भी देखा जाता है कि किन्ने लोगों ने टिकट खरीदे हैगे ने ते मूवी देखने लई लोग गए हैगे ने। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मां ओ हुंदियां ने जिन्हां दे विच फुटफॉल भी ज्यादा हुंदी है, जिवें शो लई हुण तुहानू है कौन अते हम आपके है कौन ते धुरंधर भी इस कैटेगरी दे विच है, शोले तो इलावा।

चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू फॉरेस्ट लेक क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हूँ। जी मैं वर्ड की गल कर रही हूँ, शायद कई ने पहली बार सुनिया होना है, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा में समझा जाए तो स्लीपर हिट वो फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी कंपरकम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत में इसकी कमाई बहुत घट, पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते फिल्म रफ्तार फड़दी है ते फाइनली बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित हुंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, 12वीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
3: Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
4: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

पूरी उम्मीद है कि थानू ये सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेडे बॉलीवुड लवर है कि ने, बॉलीवुड नहीं मूवी लवर्स है कि ने, बेशक को कोई भी बॉलीवुड दी देखते हो, टॉलीवुड दी देखते हो, हॉलीवुड दी देखते हो, साउथ दी देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे जानी, तो थोड़ा जरूर वधिया लगे होने हैं। तुसी बाकी जरूर दसो सानू कि थोड़ा किस तरह की जानकारी तुसी चाहते है। क्यों रेडियो बिसवानी वन सरोवर एम साथ फेसबुक पेज है जी, तो बिसवानी एट बिसवानी डॉट कॉम साथ ईमेल आई डी है। सर जेड़ा भी अपना चाहते हो अपनाओ, सा गलबात जरूर करो। बाकी कल करते मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: Hi, this is Amitabh Bachchan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रेस सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रेस सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: सरगुन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और टाउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

ना बदला में, ना बदला।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असीं तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420933171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420933171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। उमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: किरण, आई लव यू किरण।
7: वाह, क्या तेवर है सुनील के आने का।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413701651.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: सर्गुन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइटहाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

0: लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असीं तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज एक बार फिर से एक और पवित्र सुबह सताक्षी आप सबके लिए लेकर आ गई है आराधना। और आज का ये पल, ये वक्त बहुत ही खास है, क्योंकि आज आराधना है जन्माष्टमी विशेष। जी हाँ, आज की सुबह कोई आम सुबह नहीं है। आज हवाओं में चंदन की महक है और सूरज की किरणों में एक अलग सा तेज है, क्योंकि आज का दिन है उस नटखट नंद किशोर का, यशोदा के लाल का और हम सबके प्यारे कन्हैया का। आज है कन्हैया का हैप्पी बर्थडे, यानी कि जन्माष्टमी। आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। तो बस आज आराधना में कोई और बात कैसे हो सकती है, आज तो सिर्फ मेरे और आपके कान्हा की बात होगी। आइए इस आराधना की शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत ही खूबसूरत और प्यारे भजन के साथ। सताक्षी को सुनते रहिए और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी पर जन्माष्टमी विशेष आराधना। जन्माष्टमी के दिन घरों में सुबह से ही रौनक होती है और वो रौनक बड़े ही कमाल की होती है। जब भी सुबह की बात होती है तो मुझे मैया यशोदा की याद आती है। सोचिए गोकुल में सुबह कैसी होती होगी। मैया यशोदा दही मत रही है और उसकी छन छन की आवाज आ रही है। और कान्हा, हमारे कान्हा सोने का बहाना किए लेटे तो बिस्तर पर हैं, पर एक आंख खोलकर ये देख रहे हैं कि माखन कब निकलेगा। सूरदास जी ने क्या खूब लिखा है, जागिए ब्रज राज कुमार कमल कुसुम फूले। मैया उठा रही हैं कि उठो मेरे लाल, सुबह हो गई है। तो आइए मैया यशोदा के वात्सल्य रूप को यहाँ पर महसूस करते हैं इस अगले गीत में। हमारे साथ सुनते रहिए आराधना और रहिए भक्ति के सफर में रेडियो प्रस्वानी पर।

रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आज की एक और भक्तिमय प्रस्तुति आराधना। आज का आराधना बहुत ही खास क्योंकि आज है जन्माष्टमी का पावन पर्व। आप सभी को रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी की ओर से एक बार पुनः जन्माष्टमी की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आइए एक और भक्ति गीत के साथ आगे चलते हैं। सुनते रहिए आराधना रेडियो प्रस्वानी पर यूं ही और डूबते रहिए आज कान्हा की भक्ति में हमारे साथ।

कृष्णा सिर्फ माखन चोर नहीं है, वो जगत गुरु भी है। जब हम उनकी बाल लीलाओं को देखते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन जब हम कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े कृष्ण को देखते हैं तो वो जीवन का सार समझा रहे हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी सुबह में हम अक्सर तनाव में रहते हैं, काम की टेंशन और रिश्तों की उलझन, लेकिन कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। कितनी आसान सी बात है ना, अगर हम आज सुबह ये तय कर लें कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे और बाकी सब उस मुरली वाले पर छोड़ देंगे, तो हमारी आधी परेशानियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। इसी विश्वास के साथ कि कान्हा हमारी सभी विपत्तियों को और परेशानियों को हर लेंगे। हाँ, ये आगे बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ और सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो पिस्वानी 1701 AM।

सुन रहे हैं भक्ति की पावन प्रस्तुति आराधना सताक्षी के साथ। यूं तो ये सफर आपके लिए रोज लेकर आती हूँ, लेकिन जब बात हो जन्माष्टमी की तो ये त्योहार मेरे लिए बहुत ही खास हो जाता है। कान्हा से ही अपना कुछ करीब का रिश्ता है ना, और इसीलिए उस मुरली की धुन में थोड़ी देर के लिए आइए खोते हैं, याद करते हैं कृष्ण को और सुनते हैं ये अगला भक्ति गीत। सुनते रहिए आराधना रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

0: जन्माष्टमी के पर्व पर मथुरा या वृंदावन गए हैं? अगर नहीं तो आज अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं आपको वहीं लिए चलती हूँ। सुबह के इस वक्त बांके बिहारी मंदिर में आज पैर रखने की जगह नहीं होगी। हर तरफ राधे राधे की गूंज, हवा में गुलाब और गेंदे के फूलों की खुशबू और भक्तों के चेहरे पर वो खुशी जैसे आज ही उनके घर में किसी बच्चे का जन्म होने वाला है। कृष्ण का प्रेम है ही ऐसा, वो सीमाओं में नहीं बनता, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। अगर आज आप सच्चे मन से उन्हें पुकारेंगे तो वो गोकुल के ग्वाले आपके घरों में आपके दिलों में जरूर आएंगे। और इसी भाव को महसूस करते हुए आइए सुनते हैं एक और भावपूर्ण भजन हमारे साथ रेडियो ब्रिजवाणी पर।
1: माधव के हाथ में

आराधना सुन रही हैं आप रेडियो प्रस्वानी पर, आपके साथ सताक्षी है और इस भक्तिमय सफर में आपका साथ मैं निभा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये भक्तिमय प्रस्तुति आपको आनंददायक और प्रेम भरी लग रही होगी। तो इसी प्रस्तुति को आगे लेकर चलते हैं एक और गीत के साथ। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए आराधना।

जब भी भगवान श्री कृष्ण की बात होती है तो मीराबाई का जिक्र पीछे नहीं छूट सकता। मीरा ने कृष्ण को किसी मंदिर में नहीं अपने भीतर पा लिया था। मीरा जी कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा की भक्ति हमें सिखाती है कि कृष्ण को पाने के लिए बहुत बड़े अनुष्ठानों की नहीं, बस एक सच्चे मासूम और निस्वार्थ प्रेम की जरूरत है। तो बस आज जिन्होंने भी व्रत रखा है या नहीं भी रखा और जन्माष्टमी मना रहे हैं, आज अपने मन से क्रोध और ईर्ष्या को भी त्याग दीजिएगा और यही कान्हा के लिए आपका दिया सबसे बड़ा उपहार होगा।

जन्माष्टमी का पर्व आते ही कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। और आप भी अगर कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं या अपने घर में कान्हा का जन्म करने वाले हैं या कथा सुनने वाले हैं, व्रत रखा है और बड़े हर्षोल्लास के साथ आपने अपने घर को सजाया है, झांकी सजाई है, तो देखिए जब भी आप कान्हा जी का प्रसाद बनाएं, पंजीरी बनाएं, पंचामृत बनाएं, चरणामृत बनाएं, तो उसमें तुलसी के पत्ते डालना मत भूलिएगा, क्योंकि कान्हा को तुलसी अति प्रिय है और बिना तुलसी के उनका कोई भी भोग पूरा नहीं होता है। आज रात 12 बजे जब शंख बजेगा, घंटे घड़ियाल गूंजेंगे, हम सब गाएंगे नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो जो लोग व्रत हैं अपना ध्यान रखिए, दिन भर भगवान के नाम का जाप करिए, सकारात्मक रहिए और इस उत्सव के हर एक पल को महसूस कीजिए। मैं लेती हूँ आज इस सफर से विदा। कान्हा आपके सभी दुखों को हरें और आप सबके घरों में विराजमान हो, इसी भक्ति के साथ, इसी आशा के साथ समापन करते हैं आराधना का। नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे ब्रिस्बेन फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजी जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी। सो दोस्तों, कल का दिन कैसा भी रहा हो बॉस, आज एक नई सुबह है, एक नया दिन है और नया मौका है। यानी आज है भाई फ्राइडे, यानी 4th of September 2026, यानी कि वीकेंड है भाई, बिल्कुल ना दिल्ली के रास्ते की तरह बिल्कुल पास आ चुका है। ब्रिस्बेन वालों, अगर हम आज के मौसम की बात करें ना, तो आज का मौसम भाई थोड़ा सा गर्म होने वाला है। अनसीजनेबली वार्म स्प्रिंग विंड जो है वो चल रही है, तो एसी का भाई इंतजाम अच्छे से रखिएगा। आज के इस कार्यक्रम यानी सफर में हम बात करेंगे ग्लोबल खबरों की, क्वींसलैंड के कुछ दिलचस्प अपडेट्स की और हाँ, बॉलीवुड के गलियारों से आने वाली स्पाइसी गॉसिप की। कहीं मत जाइएगा, पहले सुनते हैं एक शानदार गाना और फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बानी।

वेलकम बैक है दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ खबरों को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बातचीत करूंगी उन चीज की जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी होता है वक्त, वक्त का सदुपयोग करना। यानी कि हम कुछ भी वक्त होता है, चाहे वो सेकंड हो, मिनट हो या फिर घंटे हो, कभी कभी हम अपना वक्त बेकार में बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, वेस्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने समय को हमें सदुपयोग करना चाहिए, अच्छी जगह लगाना चाहिए, क्योंकि एक बार समय बीत गया तो वो वापस लौट कर नहीं आता। इसीलिए अपने वक्त को बहुत सारा वैल्यू, इम्पोर्टेंस दीजिए। उस वक्त में वो सब चीज कीजिए जो आपको खुशी देती है, आपके अच्छे के लिए है और आपकी लाइफ को सेट करने के लिए है। ये था आज का प्यारा सा विचार और इसके बाद हम जानेंगे बहुत सारी खबरें। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक जी रेडियो प्रसवानी में। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल और तिब्बत में जो आया फ्लड है उसके बारे में, जिससे कि काफी नुकसान देखने को मिला है। जब हम वीडियोस और फोटोज जब देखते हैं और जब हमने ये न्यूज़ सुनी कि नेपाल में इतना ज़्यादा फ्लड और इतना नुकसान हुआ है, इतने जवानों की बच्चों की मौत हो गई है, बहुत दुख हुआ है। ये जब खबरें सामने आई है आंखें नम हो गई है दोस्तों, क्योंकि जब हमने अपनी आंखों से वीडियोस जब देखी ना, घर गिरते हुए लोगों के देखे, बच्चे दबे हुए देखे, इतने सारे डेड बॉडीज जब निकाल रहे थे, आंखें नम हो गई। इसी बीच दोस्तों नेपाल रिलीफ स्पोर्ट से एक खबर आई है। नेपाल और तिब्बत में आए जो कैटास्ट्रोफिक फ्लैश फ्लड्स के बाद ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्ट्री पैनी वॉन्ग ने बताया है कि अभी भी कई ऑस्ट्रेलियंस अनकाउंटेड फॉर है। हमारी क्वींसलैंड फायर डिपार्टमेंट और NSW से ड्रोन ऑपरेटर्स की एक स्पेशल सर्च टीम नेपाल रवाना हो रही है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद करने के लिए। हम सब प्रे करते हैं दोस्तों कि वहां पर जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ताकि वहां के जो लोग हैं उनको इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की हिम्मत मिल सके और कहते हैं ना अपने अंदर का जो डर है वो खत्म हो सके। क्योंकि जब एक बार ऐसी चीज हो जाए तो हर एक इंसान, हर एक नौजवान के दिल में, वहां पे जो लोग रह रहे हैं वहां पे, उन सभी लोगों के दिल में एक डर पैदा हो चुका है कि ये चीज फिर से फेस ना करनी पड़े, क्योंकि वहां पर बहुत बुरा हाल है। आप सभी ने न्यूज देखी ही होगी। ऐसी ही खबरें आप सभी के बीच लेकर आती रहूंगी। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ ओनली ऑन रेडियो प्रसवानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। इसी बीच बिजनेस वर्ल्ड से एक बड़ी खबर आ रही है कि स्वदेश जायंट एटलस कोपको ग्रुप ने कंप्रेसर्स ऑस्ट्रेलिया को एक्वायर कर लिया है, जो कि ब्रिस्बेन और मेलबर्न में बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वहीं पर अब बात करते हैं लोकल क्विंसलैंड की अपडेट्स की। हमारे क्विंसलैंड के प्रीमियर डेविड क्रिसाफुली ने यूएस ट्रेड मिशन के दौरान कैलिफोर्निया गवर्नमेंट के साथ एक शानदार 5 साल एग्रीमेंट साइन किया है। इससे एग्रीकल्चर इनोवेशन और फार्मिंग टेक को क्विंसलैंड में बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आप चाइल्ड केयर सेक्टर से हैं, तो ध्यान दें, क्विंसलैंड में नए एजुकेशन एंड केयर सर्विसेज रेगुलेशंस 1 सितंबर से लागू हो चुके हैं, जो कि चाइल्ड सेफ्टी और रेगुलर ट्रांसपोर्ट जो है उस पर कड़े नियम लेकर आए हैं। बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले है। तो चलिए, खबरों के बाद अब थोड़ा सा मूड हल्का करते हैं और सुनते हैं ये फ्रेश ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो प्रसवानी में। सो अब वक्त हो चुका है स्पोर्ट्स और बॉलीवुड मसाले का। दोस्तों NRL मैच तो आपने देखा ही होगा। हमारे ब्रिस्बेन ब्रोंकोस ने बुलडॉग्स को 34-20 से भाई हरा दिया। ये एक ना इमोशनल नाइट थी क्योंकि लेजेंडरी फ्रंट लॉवर और ये जो पाइनेहास है उनका ये एक ब्रोंकोस के साथ आखिरी गेम था रेड हिल पर। अब वो भाई रेबिटोस में मूव कर रहे हैं। बेन हंट ने क्या जबरदस्त गेम दिखाया है बॉस, आप सभी देख ही चुके हैं। इसी के साथ बॉलीवुड की चटपटी भी खबरें हैं जो आपको जरूर मैं सुनाऊंगी ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन। इस गीत के बाद सुनते रहिए और बने रहिए रेडियो ब्रिस्बेन में।

वेलकम बैक टू रेडियो प्रिस्तवानी में। तो इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फिर बॉलीवुड की चटपटी खबरें जानते हैं। दोस्तों, पूरे 18 साल बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान की ब्लॉकबस्टर जोड़ी वापस आ रही है डायरेक्टर प्रियदर्शन की सस्पेंस फिल्म हैवान में। इसका डार्क और मिस्टीरियस टीजर जो है वो आउट हो चुका है और ये फिल्म 11 सितंबर 2026 को सिनेमाज में धमाका करने वाली है। वहीं अगर हम बेबो रानी यानी कि करीना कपूर की बात करें तो बेबो यानी कि हमारी करीना कपूर खान एक नए 1990s प्रोसीजरल ड्रामा फिल्म पर काम शुरू करने वाली हैं जो कि नेटफ्लिक्स पर आएगी, जिसे डायरेक्ट कर रही हैं आरती कादव। इसी के साथ दोस्तों, बिग बॉस 20 की अगर हम बात करें, भाई अभी बिग बॉस 20 शुरू हुआ ही नहीं है, र्यूमर्स पहले ही आ चुके हैं। क्या यूट्यूबर आशीष चंचलानी बिग बॉस 20 में जा रहे हैं? दोस्तों, आशीष ने साफ मना कर दिया है और इन र्यूमर्स को गलत बताया है। ये शो जो है 6 सितंबर 2026 से शुरू होने जा रहा है, तो बिग बॉस फैंस आप सभी देखना भूलिएगा मत। क्या बात है, वैसे तो बिग बॉस 20 की फैन मैं भी हूँ, भाई बिग बॉस मैं भी देखती हूँ, तो जरूर वेट रहेगा भाई 6 सितंबर का। दोस्तों, वैसे कुछ भी कहो भाई, बॉलीवुड में तो काफी हलचल है। इस खुशी में भाई सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

वैसे दोस्तों वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता, खास कर तब जब साथ आप जैसे प्यारे ब्रिस्बेन की ऑडियंस का हो, है ना। अब वक्त हो चुका है भाई आपसे विदा लेने का। कल सुबह यानी कि कल सुबह तो नहीं, याद आया भाई कल तो सैटरडे है ना। इतनी आदत होगी आपसे बात करने की कि अब तो भाई डेज का भी नहीं पता चलता। दोस्तों मंडे फिर हाजिर होंगी आप सभी के साथ। आप लोग अपने काम पर निकलें तो याद से अपना पानी का बॉटल भूला मत ले जाना, है ना, क्योंकि क्या करें, स्प्रिंग थोड़ा सा गर्म चल रहा है ना। अपने आसपास के लोगों से प्यार करें, खुश रहें और सुनते रहें रेडियो ब्रिस्बेन। और दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन, साइन ऑफ कर रही हूं एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड ब्रिस्बेन, बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 है। हमारे सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सन्नाटे का मतलब मौत नहीं। नेपाल बाढ़ के बाद सुरंगों में फंसी उम्मीदों की किरण पर बोले टनल एक्सपर्ट डिस्क। नेपाल इस वक्त कुदरत के भयानक कहर से जूझ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल के केंद्रीय जिलों में आए भयंकर बाढ़ और सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस आपदा में अब तक 1252 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से कहीं ज्यादा अभी भी लापता हैं। गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल तिब्बत सीमा के पास से शुरू हुई इस जल प्रलय के निचले इलाके में रहने वाले करीब 25 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है। इस तबाही का सबसे डरावना पहलू यह है कि भोतोकोशी नदी के किनारे बने एक दर्जन से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों के अंदर सैकड़ों मजदूर और लोग फंसे या लापता बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर अपनी बात रखते हुए डिस्क ने लिखा कि सुरंग एक ऐसी इंजीनियर की बनाई जगह होती है जो बाहर के मौसम के कहर से सुरक्षित रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब अंदर किसी की जान न बची हो, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में भारत किसी भी तरह मदद के लिए तैयार, कीव में बोले जयशंकर। यूक्रेन की राजधानी कीव में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में किसी भी तरह से योगदान देने के लिए तैयार है। जयशंकर ने कहा कि अगर भारत किसी भी तरह से मदद करता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। जयशंकर 3 से 5 सितंबर तक यूक्रेन और पोलैंड की 3 दिन की यात्रा पर हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू करने के बाद कीव की ये उनकी पहली यात्रा है। तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ के बाद फिर लगे भूकंप के झटके। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था केंद्र। भूकंप के ये झटके नेपाल में आई त्रासदी के ठीक एक हफ्ते बाद लगे हैं। भूकंप के कारण लोगों में दहशत है, हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। नेपाल जैसी तबाही से बचने के लिए भारत ने बनाया स्वदेशी सॉफ्टवेयर जियो सैरल। हाल ही में नेपाल में आई विनाशकारी आपदा के बाद विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत के हिमालयी क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है, लेकिन स्वदेशी भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित सॉफ्टवेयर जियो सरल के इस्तेमाल से ऐसी आपदाओं के लिए न सिर्फ समय रहते सचेत किया जा सकता है, बल्कि आने पर राहत कार्यों को भी अधिक प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। इसरी इंडिया ने ये लिनक्स आधारित डेस्क टॉप GIS सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसे भारत में GIS सॉफ्टवेयर, लोकेशन इंटेलिजेंस और मैपिंग सॉल्यूशन देने वाली प्रमुख कंपनी इसरी इंडिया ने बनाया है। इसे पहली बार भारत में लॉन्च किया जा रहा है। जल्द ही जियो सरल को एंड्रॉयड आधारित फोन के लिए भी लॉन्च किया जाएगा। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसारणी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आपके साथ मैं जुड़ गई हूँ। मैं नीलम, आपकी दोस्त, आपके साथ ही अभी से लेकर 9 बजे तक हमारा यह साथ रहेगा दोस्तों। और 5 मिनट हो गए हैं 7 बजकर। बताइए क्या हाल है, क्या चल रहा है। आज फ्राइडे है, 4 सितंबर की सुबह। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है और धूप भी निकली हुई है। रास्ते पर है, आप अपने रेगुलर वॉक्स के लिए निकल गए हैं या फिर अपने गार्डन्स में टहल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं आप, स्वागत करते हैं आपका। आई थिंक इट्स गोना बी वन ऑफ दोज डेज जहां पर आई विल बी फंबलिंग, लेकिन दोस्तों आपका साथ है तो सब ठीक है। आई एम श्योर आप फील कर रहे हैं, देयर इज दिस एनर्जी बज हैपनिंग अराउंड। आज कृष्ण जन्माष्टमी का मेन डे है, ये अभी सेलिब्रेट हो रहे हैं। चलिए सुबह का आगाज करते हैं। बींग थैंकफुल फॉर टुडे, बींग थैंकफुल फॉर बींग अलाइव, हैविंग दिस ब्यूटिफुल डे जिसे हम देख पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे।

अगस्त 11 मिनट हो गए हैं, 7:00 सुबह का सफर में आप शामिल हैं। मैं हूं आपके साथ ही नीलम, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको। आप हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका। और चलिए देखते हैं फोरकास्ट में क्या बताया गया है आज के लिए। ब्रिस्बेन 17 डिग्रीज अभी है, सनी डे रहेगा, आज का टॉप्स रहेगा 31। सनी कंडीशंस विल कंटिन्यू ऑल डे, विंड गस्ट बताया गया है 16 किलोमीटर एन आवर। और सैटरडे को भी फुल सनी डे, संडे को भी फुल सनी डे विद अ टेम्परेचर ऑफ 32। और मेलबर्न 8 डिग्रीज बताया गया है, सनी डे टॉप्स रहेंगे 18, विंड गस्ट बताया गया है 16। आज बारिश 75% बताया गया है, सैटरडे को 95% और संडे को 65% मेलबर्न के लिए। और कैनबरा के लिए 8 डिग्रीज, पार्टली क्लाउडी डे 17 डिग्रीज अभी टॉप्स रहेंगे कैनबरा के लिए। सॉरी, सिडनी के लिए 13 डिग्रीज अभी है, पार्टली क्लाउडी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 23, विंड गस्ट बताया गया है 14 किलोमीटर एन आवर। गोल्ड कोस्ट के लिए 18 डिग्रीज अभी है, सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 25, विंड गस्ट बताया गया है 17 किलोमीटर एन आवर। सैटरडे एंड संडे सनी डे बताया गया है गोल्ड कोस्ट के लिए। सनशाइन कोस्ट 18 डिग्रीज है अभी, सनी डे रहेगा, टॉप्स रहेंगे 25, विंड गस्ट बताया गया है 18 किलोमीटर एन आवर। एंड द वीकेंड इज फुल सनी डे। तो दोस्तों, मौसम बहुत ही खूबसूरत सा है, एंजॉय कीजिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी, आपकी अपनी पहचान। आगे बढ़ते हैं

चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू फॉरेस्ट लेक क्विंसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

वेलकम बैक दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक अपडेट हमारे पास रीसेंट वाला कोई नहीं है, लेकिन सेंटेनरी मोटरवे कैनमो यहाँ पर सिंगल व्हीकल क्रश हुआ था विच हैज बीन क्लियर्ड अ कपल ऑफ आवर्स अगो। सो रास्ते पर आप है, अपना बेहद ख्याल रखेगा, हौले हौले सफर कीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं।

तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से है जो कल की चिंता आज करते हैं, तो कहते हैं कि स्टॉप केयरिंग टुमारो बिफोर इट अराइव्स। तो कल की चिंता करके आप आज को वैसे ही वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि पता ही नहीं है कि कल क्या होगा। अरे, आप इस दुनिया में रहेंगे भी नहीं, तो या रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो हमें पता ही नहीं रहता है। अभी एक घंटे के अंदर, पांच मिनट के अंदर क्या होने वाला है, कोई किसी को नहीं पता है दोस्तों, ऑब्वियसली। तो फिर कल के बारे में सोचने से क्या। तो आप अगर ये कहोगे, अच्छा चलो कल के बारे में प्रिपरेशन तो कर सकते हैं ना, लेकिन किस चीज की प्रिपरेशन, राइट? हमें तो मालूम ही नहीं कि क्या होना है। तो I think, I believe, nowadays, because पहले भी मैं भी इस तरह सोच रही थी कि कल के बारे में बड़ा वरी रहता था, टेंशन रहता था कि कल क्या होगा, कैसे होगा, ये बिल है, वो है, बच्चों की पढ़ाई है। तो अब ये सोचती हूँ कि I'm just gonna flow with it। अगर कोई भी टेंशन रहता है, it's okay। क्योंकि जो टेंशन रहता है उसको एनर्जी देते हैं, वो बड़ा हो जाता है। एंड रियली आजमाया भी है, एंड आई एम श्योर आपने भी, आपका भी कोई एक रास्ता होगा जिससे आप डील करते हैं, जिस तरह से आप डील करते हैं। लेकिन तो जब कल अभी आया नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन कितनों भी आप उसको समझाते हैं या वो खुद ट्राई करते हैं, आई एम श्योर आप जानते हैं कि आप कि ये कमजोरी होती है कि आप कल के बारे में चिंता करते हैं। तो सभी लोग जानते हैं उनकी क्या कमजोरियां होती है, एंड आई एम श्योर आप उस पर वर्क करना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर समझे दोस्तों, ये ज़रूर माने कि कल के बारे में आप जानते नहीं हैं, उसके बारे में चिंता करके आज आप बहुत ज़्यादा अपने प्रेशियस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो आज ये सोचें कि आज जो हमारा दिन है वो हम नहीं बिताएंगे कल के बारे में सोचने से। तो लेट्स जस्ट लिव इन द मोमेंट एंड जस्ट एंजॉय टुडे। हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सुबह का सफर में आप शामिल हैं, गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे हैप्पी फ्राइडे। सप्ताह का अंत है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। एंजॉय कीजिए बहुत से खूबसूरत से गीत।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan,
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan,
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
10: से। To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: दोस्तों सुबह का सफर में आगे बढ़ते हैं और इट्स 7:31 हमारे आपके घर आने का टाइम हो गया है। तो अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों, विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, और जन्मदिन की शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से एंड बेस्ट विशेस। और एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं या कुछ स्पेशल ओकेजन आज चल रहा है शायद, तो उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं बेस्ट विशेस देना चाहेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।

बस तो बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म गुरु से इसको हमने लिया। चलिए, इस प्लैनेट में हम रहते हैं तो इस प्लैनेट की एक खूबी बताते हैं आपको। जो ये फॉरेस्ट आप देखते हो, ये हमेशा वैसे ही कैसे रहता है, और तो आपको एक रिमाइंडर दे दैट वी लिव ऑन अ प्लैनेट वेयर ट्रीज वॉर्न ईच अदर व्हेन डेंजर इज कमिंग। और ये कैसे करते हैं? थ्रू एयरबोर्न और केमिकल सिग्नल्स एंड अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क्स। तो ये थोड़ी ज्ञान की बातें हैं एंड इट्स गुड टू हैव। जब मैं जानी तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च अप किया कि कैसे करते हैं पेड़ एक दूसरे को वॉर्न। इट्स लाइक अगर कोई डिजास्टर आ रहा है, हम एक दूसरे को वॉर्न करते हैं, ये किया, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो उसी तरह पेड़ भी अपने आप को वॉर्न करते हैं। जैसे कि जब इंसेक्ट लीफ को च्यू करते हैं तो क्या होता है, जो डैमेज ट्रीज है रिलीज करता है केमिकल्स और एथिलीन गैस उसको कहते हैं। ये गैस डिस्ट्रेस सिग्नल प्रोड्यूस करता है जब अटैक होते हैं। तो जो नेबर रिस्पॉन्स होता है, जो नियर बाय हेल्थी ट्रीज होते हैं, वो क्या करता है, दे कैच द सेंट एंड देन स्टार्ट मेकिंग बीटा टैनिंस। और ये डिफेंसिव टॉक्सिन्स है जो मेक करता है लीव्स को क्वाइट बिटर। तो जो इंसेक्ट आते हैं मीठे मीठे लीव्स खाने के लिए, तो उन्हें क्या मिलता है, बिटर लीव्स। तो वो उस पेड़ को अटैक नहीं कर पाते हैं। और अंडरग्राउंड जो नेटवर्क होता है, जो सोइल के अंदर होता है, ये यहाँ पर जो फंगई लिंक है द रूट्स, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल पल्सेस होते हैं, ट्रीज सेंड स्ट्रेस मैसेजेस, वाटर एंड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स टू दिस रूट्स एंड फंगल पाथवेज टू वॉर्न नेबरिंग ऑन यंगर ट्रीज अबाउट डिजीज एंड इंसेक्ट्स। सो जस्ट इमेजिन, इट्स जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, राइट? जैसे हम रिएक्ट करते हैं उसी तरह जो पेड़ है वो भी रिएक्ट। तभी मैं कह रही थी कि आप जब किसी पेड़ के पास लत कर बैठते हो, उसका सहारा लेकर बैठते हो, यू फील सो मच कंफर्ट बिकॉज दे अलाइव एंड दे गिव यू कंफर्ट एंड दे सिट विद यू और यू सिट विद देम। या इट्स अमेजिंग, द वर्ल्ड इज अमेजिंग। दोस्तों, जस्ट समथिंग टू कीप अंडर योर बेल्ट एंड टू नो, कभी कॉन्वर्जेशन उठ गया तो आप जानते हैं इसके बारे में। एंड इट्स अमेजिंग, अगर इस तरह की बातें जब आप करते हो देन कोई दूसरा पर्सन के पास कुछ और बताने को होता है, एंड देन ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। एंड जो मुझे मिला तो मैंने सोचा शेयर करते हैं, बिकॉज इट्स अमेजिंग हाउ आवर प्लैनेट वर्क्स। और जिसे हम ऐसे ही सोचते हैं, पेड़ पालों को काटते रहते हैं और लगाते नहीं हैं फिर से, तो मे बी क्या। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, इट्स 7:46 और चलिए हमारे पास एक छोटी सी कविता है जो हमारे रिलेशनशिप गॉड के साथ कुछ बयां करती है। चलिए पढ़ते हैं इसको। कभी कभी सोचती हूँ कितना अजीब सा रिश्ता है ना भगवान से हमारा। खुशी मिले तो कहते हैं उनकी कृपा है, और मुश्किल आए तो पूछते हैं मेरे साथ ही क्यों। जब भी कुछ मांगते हैं तो लगता है भगवान हमारी हर बात सुन रहे हैं, पर जब देर से हो जाए तो लगता है शायद इस बार हमारी सुन ही नहीं रहे। कभी उनसे रोते हैं, कभी उनसे शिकायत करते हैं, फिर भी अपनी हर बात आखिर में उन्हीं से कहते हैं। शायद यही आस्था है, सवाल कितने भी हो भरोसा फिर भी उन्हीं पर बना रहता है। दोस्तों, फेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी फेथ आप मानते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि यू कंटिन्यू हैविंग दैट फेथ इन गॉड, ट्रस्ट एंड जस्ट हैविंग दैट डिवोशन। आई बिलीव कि आप जितना शो करते हैं ऊपरी होना इट डजेंट रियली मैटर, राइट, लेकिन जो अंदर से है वो आस्था होना चाहिए। सो इट डजेंट रियली मैटर दोस्तों कि आप कितना करते हैं या कितना नहीं करते हैं, अंदर से आप क्या फील करते हैं वो रियली इम्पोर्टेंट है। सो अपने अंदर वाला जो चीज़ है उसको साफ करें और उन्हें सुधारें, उन उसमें जो आस्था है वो फेथ है वो बनाए रखें। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। चलिए कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर

वेलकम बैक दोस्तों, सुबह के सफर में आप शामिल हैं। और दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि जो हमारा हम जब किसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं तो आई डोंट नो व्हाई वी ऑलवेज थिंक एवरीथिंग गोइंग रॉन्ग। एंड हमारा जो दिमाग है इतना पावरफुल है, इट्स इफ इट्स इनफ टू इमेजिन एनी एवरीथिंग गोइंग रॉन्ग। सो और आप तो जानते ही हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वैसे सोचने लगते हैं इन द नेगेटिव साइड, एंड यू कैन एक्चुअली मेक इट हैपन नेगेटिव, तो व्हाई नॉट गिव इट अ चांस टू इमेजिन थिंग्स गोइंग राइट एज वेल। नॉट एवरी अनआंसर्ड क्वेश्चन हो हैज अ बैड एंडिंग, या फिर कोई डिलेज हो, इट डजेंट मीन कि ये डिसअपॉइंटमेंट है। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, यू कैच योर सेल्फ ओवर थिंकिंग द वर्स्ट, पोज एंड आस्क व्हाट इफ इट एक्चुअली वर्क्स आउट। तो आपको रिमाइंडर देते हैं, इफ यू कैन ओवर थिंक द वर्स्ट सिनारियो, यू कैन ओवर थिंक द बेस्ट सिनारियो टू। सो या जस्ट टू कीप दैट इन माइंड। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान नीलम का साथ है, सुबह का सफर में शामिल है दोस्तों। 8 बजने वाले हैं, 7 मिनट बचे हैं, सफर कर रहे हैं हमारे साथ, तो बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं, ड्राइव सेफली, हैप्पी फ्राइडे कहना चाहेंगे।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: वेलकम बैक दोस्तों। और 3 मिनट हो गए हैं 8:00, 1 घंटे का सफर बाकी है हमारे साथ आपका। और हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं आपका सुबह का सफर में दोस्तों। और चलिए देखते हैं ट्रैफिक अपडेट आपको देते हैं। नॉरिस रोड ब्रैकन रिज यहां पर सिंगल व्हीकल क्रैश बताया गया है। लेन और लेन सब ब्लॉक्ड नॉर्थ बाउंड टूवर्ड्स ब्रैकन रिज। और 20 डिग्रीज ब्रिस्बेन में अभी टेम्परेचर है। और चलिए कहते हैं कि क्रोध करके वो सब मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। क्रोध करके वो सब मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है दोस्तों। चलिए एंजॉय करते हैं

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: वेलकम बैक दोस्तों, 11 मिनट हो गए हैं 8 बजकर, और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे पास एक डोसा रेसिपी है जो शेयर करना चाहेंगे, मूंग और कोरिएंडर को लेकर। तो इसमें जो हीरो है इसका वो है मूंग, और एक्चुअली दो हीरो है, राइवलरी है यहाँ पर, और कोरिएंडर है। तो दोनों का जो मेजरमेंट है सेम है। तो मूंग दाल जो येलो वाला है उसको आप सोक कर दें अबाउट 5 आवर्स। तो इट्स अ ब्रेकफास्ट रेसिपी, तो आप इट्स हाई इन प्रोटीन, और मूंग आप जानते हैं इसके खूबियां, और डाइट्री फाइबर बहुत है, वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, डाइजेशन हेल्प करता है, शुगर रेगुलेट करता है, और हार्ट हेल्थ भी रखता है, न्यूट्रिएंट्स रिच फॉर प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेगनेंट हो तो भी खा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मूंग दाल लेते हैं 1 कप और येलो वाला, तो इसको आप भिगो दें, सोक कर दें ओवरनाइट या फिर 5-6 घंटे, और फिर सुबह अच्छी तरह से इसको धोकर ड्रेन कर लें, और फिर 1 कप कोरिएंडर इसमें यूज़ करना है, 2 हीरो है, एंड इसको ग्राइंडर में डालना है। इसके साथ आप चिली डाल सकते हैं और जो आपके पसंद है। अगर आप गार्लिक सुबह सुबह नहीं पसंद करते हैं, और जिंजर दोनों छोड़ सकते हैं, गार्लिक भी छोड़ सकते हैं और जिंजर दोनों में से स्वैप भी कर सकते हैं, अगर एक पसंद है दूसरा नहीं है तो वो भी। और फिर जीरा ले सकते हैं 1/2 टीस्पून, और इसमें थोड़ा सा हल्दी आपको डालना है 1/2 टीस्पून, और फिर सॉल्ट आप जैसे पसंद करते हैं, और इसको अच्छी तरह से आपको ब्लेंड करना है, ग्राइंड करना है, और वाटर रिक्वायर्ड, जैसे डोसा का बैटर रहता है ना, जितना रनी रहता है, एकदम से रनी नहीं, जितना आप कंट्रोल कर सके तवे पर। तो फिर अपना जो तवा है उसको आप प्रिपेयर करें, और उसको थोड़ा पहले वोटा से डालकर उसको अच्छी तरह से वाइप डाउन करें हॉट तवा को, एंड देन आप अपना जो डोसा का जो बैटर है उस पर पोर करें और स्प्रेड करें, और थोड़ा थोड़ा ऑयल किनारे डालें, और फिर उस पर आप अनियंस अगर सुबह पसंद करते हैं तो आप फाइन अच्छी तरह से काट कर अनियंस डाल सकते हैं, एंड देन कैन एन्जॉय दिस डोसा। ये बहुत लाइट एंड क्रिस्पी ब्रेकफास्ट आइडिया है, आप एन्जॉय कर सकते हैं। सो वेरी इजी, आप मूंग दाल लें और फिर उसमें कोरिएंडर डालें, और फिर या सो द बेस्ट थिंग अबाउट इंडियन डिशेज इज आई बिलीव कि आप अभी जैसे मुझे रिमेम्बर होता है कि आज ही को मैं अपने अगर कोई रेसिपी पूछती थी तो कहती थी अच्छा चलो पहला वाला जो हीरोज रहता है वो बता देती है एंड उसके बाद इतना ये इतना ये अपने हाथ से डांटती थी यू नो शी वुड से बस इतना सा ये इतना से एंड यू थिंक अच्छा चलो हाफ टी स्पून की एक टी स्पून या दो एंड नहीं इतने से एंड कोई मेजरमेंट नहीं रहता था लेकिन बहुत अच्छा उतरता था रेसिपी. सो आई एम श्योर आप भी ये जानते हैं. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं.

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: दोस्तों जो कि स्प्रिंग जो सीजन है बसंत ऋतु वेल एंड ट्रूली इज हियर, और जो कि हमारे जो टेम्परेचर्स है वो बता रहे हैं. तो इसमें दोस्तों आता है जो स्प्रिंग स्टार्ट हो गया है, तो रिवर फायर जो हमारे ब्रिस्बेन सिटी में होता है, तो ये मार्क करता है ओपनिंग वीकेंड फॉर द ब्रिस्बेन फेस्टिवल. और रिवर फायर सैटरडे को है और 5th सितंबर और जो डिस्प्लेज होंगे, और ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स का जो एयरक्राफ्ट होता है, जो फ्लाईओवर्स होते हैं, एवरीथिंग. सो यू विल बी एंजॉयिंग, अगर आप जा रहे हो, सुपर हॉर्नेट्स और ग्लोब मास्टर 3, ये सब रहेगा, आप देखोगे. और एक्चुअली कल आई थिंक और आज भी 12:30 अगर आप सीबीडी के तरफ रहते हो तो उस तरफ यू माइट बी एबल टू स्पॉट वन. रिहर्सल्स हो रहे थे आई एम श्योर. कल हम सोच रहे थे कि लेकिन वी मिस्ड इट. 11:30 वी वर थिंकिंग, बट इट वाज एट 12:30. थर्सडे को रिहर्सल हो रहे थे एंड आज भी होगा आई थिंक 12:30. एनीवे, सो जो फायरवर्क फिनाले रहेगा वो 7 o'clock से रहेगा एंड 20 minutes, इट विल रन फॉर 20 minutes. तो और इट विल फीचर एन एक्स्ट्रा फायरवर्क बाज बिटवीन विक्टोरिया ब्रिज एंड नेवल बोना ब्रिज. और दोस्तों कुछ ट्रेवल और रोड क्लोजर्स भी रहेगा, रिवर क्लोजर रहेगा, और आप ये सब चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर. कुछ जगह पर ऐसा रहेगा कि पेडेस्ट्रियन को एक्सेस रहेगी, पेडेस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट को, और तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं. और आई थिंक इट विल बी बेटर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, और सुविधा रहेगी आपको, पार्किंग के भी टेंशन नहीं रहेगा. तो ऐसे ढेर सारे स्पॉट्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं, वहां से आप रिवर फायर जो रहेगा उसको एंजॉय कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं.

दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, हमारी पूरी ब्रिजवानी टीम, जतीश, अंजिला आंटी और रितीश अंकल एंड द ब्रिजवानी जो टीम है, उसकी ओर से आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं सभी को हम देना चाहेंगे हमारी तरफ से। और चलिए दोस्तों,

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: दोस्तों, सुबह का सफर में आगे बढ़ते हैं। याद दिला दे कि 9 पर जुम्मा प्रोग्राम है, आधे घंटे का सफर बाकी है।

दोस्तों हमारे पास एक फेंग शुई टिप है, और ये एक जो फेंग शुई टिप है ये फेंग शुई टर्टल को लेकर है। तो अगर आप ये जो टर्टल जो पीस है, डेकोरेटिव पीस है, इसको आप घर पर रखते हैं, तो मेक श्योर जो टर्टल का जो फेस है ये डो नहीं फेस कर रहा है, इट्स नॉट फेसिंग आउटवर्ड्स। एंड क्योंकि फेंग शुई के अनुसार माना गया है कि एनर्जी लीव्स when it's facing outward and wealth follows, so the right way to put the turtle is facing inwards where the energy enters and wealth grows. So that's how you place your feng shui turtle agar aapke paas hai. So just a little tip going there. Aur chaliye aage badhte hain. Ye geet humne liya hai film Aur Pyar Ho Gaya, बॉबी डियोल और ऐश्वर्या राय पर फिल्म आया गया, बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

तो सब बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सुन रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट टिप फॉर द शो। दोस्तों अगर आप आपके घर में इंडोर प्लांट जैसे कि पीस लिली हो या फिर स्नेक प्लांट हो, तो स्नेक प्लांट के लिए अगर आपके घर में ये है तो उसके लिए कहते हैं कि जो बनाना वोटा है, बनाना पील वोटा, वो बहुत अच्छा है। तो आप उस पर डालते हैं अगर, तो अच्छा ग्रोथ रहेगा, अच्छे ग्लॉसी लीव्स रहेंगे। तो बनाना वोटा, बनाना पील वोटा कैसे बनाते हैं, जो बनाना आपने खाया हुआ है उसका जो पील है उसे फेंक के बाद वैसे कंपोस्ट में डालते हैं तो अच्छा बात है। लेकिन वो ये वोटा बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक जार ले लें, उसमें आप जो बनाना पील है उसको चॉप कर दे ताकि ईजिया हो इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है निकलने। तो उसका जो खास जो इसका जो मिनरल है वो है पोटेशियम बनाना पील में। तो आप जो काट कर जो पील है उसको पानी में धर दे, दो तीन दिन तक आप इसको स्टीप होने दे, जो जो इसके जो न्यूट्रिएंट्स है खूब अच्छी तरह से निकल जाएगा वोटा में। तो ऑन द थर्ड डे आप इसको ड्रेन कर ले या फोर्थ डे ड्रेन कर ले अच्छी तरह से, और जो पील है उसको आप कंपोस्ट में डाल सकते हैं। और जो जो पानी बचा होता है मैगी को, डू यू रिमेम्बर दैट मैगी एड, वो तो नूडल्स जग सोख लेगी। लेकिन वहां हम नहीं जा रहे हैं, मैगी के बात नहीं कर रहे हैं, बनाना पील के बात कर रहे हैं। तो जो बचा पानी है उसको आप 1/5 ऑफ जो वोटा है बनाना पील का और दियादा आप नॉर्मल पानी में मिक्स कर अपने प्लांट में डाल सकते हैं। और या फिर जो भी प्लांट, एक्चुअली आई बिलीव बनाना पील इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग, राइट? और आप इसको ये यूज कर सकते हैं अपने जो स्नेक प्लांट है उसमें, बनाना पील बहुत पसंद करते हैं उसका जो वाटर है। चलिए एंजॉय करते हैं ये गीत।

दोस्तों अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया आज और आशा है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे आपका। हैव अ लवली डे, ब्यूटीफुल वीकेंड, और मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन नमस्कार।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर।
1: है रेडियो 79.1, जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो, और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहु। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम।
1: إياك نعبد وإياك نستعين
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Jummah programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Jummah programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Jummah Hai. Chalo. آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم عزیزان ملت و برادران محترم یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے دین کی مبارک باتیں پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف عطا فرمایا یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اسی ماہ مبارک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تھی لیکن ماہ مبارک چل رہا ہے اور ہر سال ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا رہے گا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم آپ کا مبارک پیغام قیامت تک رہے گا اسی لیے رب العالمین نے اپنے مقدس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار ناموں سے یاد کیا بلند اور اعلیٰ القاب و خطاب دیے عزیزان کرام قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں سے چند خاص آیتوں پر غور کیجیے کہیں فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیء علیما لوگو سن لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں سب سے آخری نبی و رسول ہیں اس پاک آیت کے ذریعے یہ اعلان کیا گیا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں نبوت و رسالت آپ کی پاک ذات پر ختم کر دی گئی اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کی تمام انسانوں کے لیے ہے اسوہ حسنہ ایک عمدہ نمونہ ایک آئیڈیل زندگی قرار دیا گیا ایسی پاک زندگی جس میں کسی طرح کا عیب نہیں کسی قسم کی کجی و کمی نہیں بلکہ ایک مکمل ترین زندگی فلاح و کامیابی والی زندگی فرمایا گیا اور اس پاک زندگی کو اپنانے کا اور اسی پر چلنے کا قرآن کریم میں حکم دیا گیا اس کا اعلان قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا یعنی جو اللہ سے اور آخر کے دن سے ڈرتا ہو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اس کی یاد کرتا ہو ایسے شخص کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے عزیزان محترم یوں تو اللہ کا ہر نبی و رسول اپنے زمانے میں اپنی قوم کے لیے اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے لیکن سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے زمانے کے لیے ہی نہیں اپنی قوم ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے تمام قوموں کے لیے تمام مخلوقات کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے رب العالمین نے خود رحمت العالمین کا خطاب دیتے ہوئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین हमने आपको सिर्फ अपना नबी व रसूल ही बनाकर नहीं भेजा, बल्कि आपको रहीम व करीम रब ने आपको तमाम दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप रऊफ रहीम और रहमतुल आलमीन नबी व रसूल हैं। ये मुबारक लकब व खिताब सिर्फ आप ही की मुबारक जात को अता किया गया। अजीजान मिल्लत, जब सैयदना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन हैं, आपकी जिंदगी तमाम इंसानों के लिए उसवे हसना और उम्दा नमूना है, आइडियल जिंदगी है, आप ही रहमतुल आलमीन हैं, तो फिर हम सब के लिए जरूरी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की इत्तिबा व ताबेदारी करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और मोहब्बत हासिल करने के लिए फर्ज है कि हम सैयदना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की पाक तालीमात पर चलें, आपके फैसले व अहकामात के सामने सर झुकाएं। अजीजान किराम, शुरू में मैंने कुरान करीम की जिन पाक आयतों को तिलावत किया था उसमें साफ फरमाया गया है, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی محبت چاہتے ہیں, اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے مقدس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کریں, ایسے تابعدار بندوں کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی, اللہ کے محبوب بن جائیں گے, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, अल्लाह के मुबारक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलेगी, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत मिल जाएगी तो अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे, बख्श देंगे, और अल्लाह ताला बड़े माफ फरमाने वाले और बड़ी मेहरबानी फरमाने वाले हैं। इसके बाद फरमाया गया, कुल अतीउल्लाह व रसूल, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से बतला दीजिए कि तुम अल्लाह उसके रसूल की इताअत व ताबेदारी करो, फइन तवल्लो फइन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, फिर इतनी साफ व सच्ची बात बतलाने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह उसके रसूल की इताअत पर एराज करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, मुंह फेर लेंगे, दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे, तो सुन दे कि अल्लाह ताला ऐसे नाफरमानों से मोहब्बत नहीं करते। अजीजान किराम, कुरान करीम की इन आयात पर ठंडे दिल से गौर करें कि अल्लाह ताला हमको क्या हुक्म दे रहा है, हमारे हक में क्या फैसला दिया जा रहा है, हमें किस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए, हमारी फलाह व कामयाबी का कौन सा रास्ता है। अजीजान मिल्लत, हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने अल्लाह और उसके मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व ताबेदारी करके ही दुनिया व आखिरत में इज्जत व अज़मत हासिल की। कैसर व किस्सा की हुकूमतें उनके खजाने मुसलमानों को उस वक्त दिए गए जब उन्होंने अल्लाह उसके रसूल की मुकम्मल इताअत व ताबेदारी करके दिखाई। इताअत व ताबेदारी और अदल व इंसाफ के लिए के बेशुमार वाकयात अहादीस व सीरत की किताबों में मौजूद हैं। सैयदना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल में पूरे अरब की काया पलट दी थी। ईमान व यकीन और आखिरत की फिक्र का वह नूर लोगों के दिलों में भर दिया था जिसकी नजीर व मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। बिरादरान मिल्लत, जरा इन वाकयात पर गौर कीजिए, शराबों में हमेशा मस्त रहने वाली कौम को जब ईमान का नूर और इस्लाम की दौलत मिल गई और जब उनको अल्लाह का हुक्म सुनाया गया कि लोगो सुन लो, अल्लाह ने आज से तुम पर शराब को हराम कर दिया है, मदीना मुनव्वरा की गलियों और महलों में शराब के हराम होने का ऐलान हुआ तो आवाज सुनते ही शराब के प्यालों को जमीन पर पटक दिया, बर्तनों को तोड़ दिया, शराब मुंह में थी तो फौरन उगल दी, कुल्ली कर दी। मदीना मुनव्वरा के की गलियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे बारिश का पानी। लोग वुजू और गुसल करके मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले, वहां जाके देखा कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की यह आयत तिलावत फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون। इसमें फरमाया गया, इस पूरी आयत में ईमान वालों से फरमाया गया कि तुम्हारे लिए शराब, जुआ, बुत परस्ती, कुला के तीर, ये सब हराम करा दिए गए। हर किस्म की गैम्बलिंग, हर किस्म के जुआ को हराम करा दिया गया। ये रिज्स अनिहायत गंदी चीज है। शराब और युवा को बुत परस्ती के साथ जमा करके बतलाया गया है। जिस तरह बुत परस्ती बिल्कुल हराम व नाजायज है, इसी तरह शराब व जुआ भी कतन हराम है। इससे अपने को बचाओ, इससे दूर रहो। शैतान इन चीजों के जरिए तुम्हारी दीन और दुनिया दोनों को बर्बाद करना चाहता है। ये नापाक चीजें आपस में लड़ाई झगड़े बोख्स और अदावत पैदा करती है। ये गंदी चीजें अल्लाह की याद और नमाज जैसे अहम फरीजे से इंसान को रोक देती है। अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की मुबारक आयतों को तिलावत किया और करते जाते थे, और ईमान वाले हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाए तौबा कर रहे थे। सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु इस मौके पर एक वाकया बयान फरमाते हैं कि एक सहाबी का कारोबार और तिजारत यही थी कि वो खैबर से, जो मदीना मुनव्वरा से दूर एक शहर है, वहीं से शराब लाते और मदीना में फरोख्त करते थे, बेचते थे। जब शराब के हराम होने का हुक्म नाजिल हुआ तो इस वक्त ये सहाबी शराब लेने के लिए खैबर गए हुए थे। काफी मकदार में मस्जिदों और घरों में शराब लिए हुए मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो रहे थे। रास्ता ही एक सहाबी मिल गए। मुलाकात होते ही उन्होंने ये खबर सुना दी कि अल्लाह ताला ने शराब हराम कर दी है, अल्लाह का हुक्म आ गया है। ये सुनते ही शराब लाने वाले ये बुजुर्ग सहाबी जिस जगह तक पहुंचे थे वहीं खड़े रह गए और इसको गवारा ने फरमाया, इसको पसंद भी नहीं फरमाया कि हराम होने की खबर सुनने के बाद शराब के बर्तनों को लेकर एक कदम भी आगे बढ़े, बल्कि वहीं एक टीले पर शराब के ये सब मशकीदे रखकर सीधे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मुझे एक खबर मिली है कि अल्लाह ताला ने शराब को हराम करार दिया है, क्या यह सही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, शराब हराम हो गई है। सहाबी ने फरमाया, नहीं, फरमाया। सहाबी ने अर्ज किया कि क्या मुझे इसकी इजाजत है कि मैंने शराब को जिससे खरीदा है उसको वापस कर दूं? आपने फरमाया, नहीं, अब इसका वापस करना भी आपके लिए जायज नहीं। उन्होंने फिर अर्ज किया कि मैं किसी गैर मुस्लिम को हदिया दे दूं, बख्शिश दे दूं, जिसके मुझ पर कुछ एहसान है। आपने जवाब में इशारत फरमाया कि ये भी नहीं कर सकते। उन्होंने फिर अर्ज किया कि जिस माल से मैंने ये शराब खरीदी है इसमें यतीमों का माल भी शामिल था, जो मेरी सरपरस्ती और परवरिश में है, इसका क्या होगा, इसका क्या करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हमारे पास बहरीन का माल यानी सरकानी बैतुल माल में माल आ जाएगा, उस वक्त तुम आ जाओ, यतीमों के हक का मुआवजा बदला बैतुल माल से अदा कर दिया जाएगा। ये सुनकर ये बुजुर्ग सहाबी, ईमान वाले सहाबी, अल्लाह के रसूल की खिदमत अकदस से वापस हुए और उसी जगह पर उसी टीले पर पहुंचकर शराब के मशकीदों के ढक्कन खोल दिए, जिसके नीचे शराब इस तरह बहने लगी जैसे बारिश का पानी। देखिए, यह है जज्बे इताअत, यही अल्लाह और अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी। अपना हजारों रुपये का नुकसान खुशी खुशी गवारा कर लिया लेकिन अपने ईमान पर आंच आने नहीं दी। माल चला जाए लेकिन ईमान चला न जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हो जाए ये नाराज न हो, यह सच्चे ईमान की अलामत व निशानी और यह सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये नसीब फरमाए, आमीन। अजीजान मिल्लत, इस्लाम के आने से पहले दुनिया वालों की का कानून ये था कि ताकतवर कमजोर को सताता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला का जालिमाना कानून चल रहा था। काले गोरे में फर्क किया जाता था, ऊंचे नसब व खानदान वाले कुछ भी करें उसके लिए कोई सजा नहीं, गुनाहों व कसूरों की आदमियों और शख्सियतों को देख देख करके दी जाती थी। बड़े दर्जे के लोग सारी सजाओं से मुस्तस्ना, उनकी कोई सजा नहीं थी। कौम के गरीब, मिस्कीन और जईफ लोग अगर कोई गुनाह और कसूर कर ले तो उनको पूरी पूरी सजा दी जाती, बल्कि ये कहा जाए तो गलत न होगा कि बड़ों के कसूर व जुर्म को कसूर व जुर्म जुर्म ही नहीं समझा जाता और गरीब बेकसूर को भी कसूरवार समझ कर सजाएं दी जाती थी। ऐसे बुरे और नाजुक वक्त में अल्लाह ताला की रहमत कामिला इस्लाम की सूरत में दुनिया वालों की तरफ मुतवज्जे हुई तो ये जालिम ये जुल्म सितम के बादल काई की तरह छिट गए फट गए और अदल इंसाफ किए बेनजीर कानून इस्लाम ने दुनिया वालों के सामने पेश किए और रहमत दो आदम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबरी और अदल इंसाफ को के फैसले करके दिखाए। अदल इंसाफ की बेशुमार मिसालें इस्लामी तारीख में मौजूद है। इस्लामी तारीख का मशहूर वाकया है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कबीले बनी मखजूम की एक औरत ने चोरी की। इस्लामी शहादतों से इसकी चोरी साबित हो गई। इस्लामी कानून के मुताबिक इसका हाथ काटने का फैसला हुआ। ये औरत ऊंचे खानदान की थी, बड़े कबीले की थी। कुछ लोगों को यह ख्याल हुआ कि कोशिश व सिफारिश करके किसी तरह औरत को सजा से बचा लिया जाए। किसी को जुरत व हिम्मत न होती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिफारिश के लिए कुछ अर्ज कर सके। आपस में मशवरा करके यह तय किया कि हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हो से अल्लाह के रसूल को बड़ी मोहब्बत है। इस काम के लिए हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हो को आगे किया जाए। चुनाचे हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हो से लोगों ने कहा कि आप ही सिफारिश करें। चुनाचे हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बारगाही रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये औरत बड़े खानदान की है, उसे माफ कर दिया जाए। ये सुनते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजी के लहजे में फरमाया, ए उसामा, क्या अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हुदूद में से एक हद के बारे में सिफारिश करते हो, यानी अल्लाह का कानून सबके लिए बराबर है। फिर इस वाकये की अहमियत जाहिर करने के लिए लोगों को मस्जिद में जमा किया और सबके सामने खुतबा इरशाद फरमाया और ऐलान किया, जिसका खुलासा यह है, कई लोगों, बेशक तुमसे पहले लोग इसी वजह से हलाक व तबाह हुए कि उनकी आदत थी कि जब कोई बड़ा आदमी उनमें चोरी करता तो उनको छोड़ देते और कोई जईफ व बेकस गरीब चोरी करता तो उस पर हद व सजा जारी करते। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे खुदा की कसम, खुदा न खास्ता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। इसी अदल इंसाफ की पाक तालीम ने इस्लाम की अजमत को बढ़ाया और इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। कैसर व किस्सा के बादशाहों ने जब अपने दरबारियों और अपने फौजी सिपे सालानों से दरियाफ्त किया कि क्या बात है कि मैदान जंग में हर मकाम पर हमारी जबरदस्त ताकतवर फौजें शिकस्त खाती हैं और मुसलमान बावजूद हथियारों की कमी के आगे ही बढ़ते जाते हैं और हर जगह इन्हीं को फतह मिलती है, तो लोगों ने जवाब दिया कि हमारी फौजें तो रातों को शराब व जिना में मस्त रहती हैं और मुसलमान फौजें रातों को नमाजों में गुजारते थे, अपने रब से फतह नुसरत की दुआ मांगते थे और दिल में अल्लाह तबारक तआला की हुजूर में गिड़गिड़ा करके अपनी कामयाबी और फतह की दुआ मांगते, रात में मुसल्ले पर खड़े हो जाते और दिन में घोड़ों की पीठ पर बैठकर अल्लाह के दीन के लिए जिहाद करते, जंग करते हैं। और मुसलमान फौजों में इंसाफ इतना है कि अगर उसके सरदार की बेटी भी चोरी कर ले तो इसकी सजा दी जाती है। जिस कौम में ये सिफात व खूबियां मौजूद हों, अल्लाह की मदद उनके साथ होती है, फतह कामयाबी उनका कदम चुमती है। जरा सोचिए तो सही कि दुश्मन भी इन खूबियों को तस्लीम करते हैं। जब तक इस्लाम की पाक तालीमात हमारी जिंदगी में थी, दुनिया हमारे कदमों के नीचे थी और दुनिया पर हम हुक्मरानी करते थे, लेकिन जब से हमसे अल्लाह और अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर चलना छोड़ दिया, जब से हमने अल्लाह तबारक व तआला के पाक हुक्मों पर चलना छोड़ दिया, जिल्लत व रुस्वाई ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। दुश्मनों के दिलों से हमारा रौब दबदबा और हमारी हिब्बत खत्म हो गई। अजीजाने मिल्लत, अब भी हमारे लिए फलाह व कामयाबी का वाहिद रास्ता यही है कि अल्लाह और अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, इस्लाम की पाक तालीमात को अपनी जिंदगियों में दाखिल करें। सूरत व सीरत اعمال و اخلاق وہ ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک رسول کی کو پسند ہوں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم العلون ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے رہو گے، ایمان پر قائم رہو گے تو تم ہی سر بلند رہو گے، عزت والے رہو گے، دنیا و آخرت میں عزت و عظمت کا مقام تمہیں کو حاصل ہوگا۔ بزدلی اور رنج و غم، خوف و ہراس، کوئی بھی چیز تمہارے نزدیک نہیں آئے گی، بس شرط یہ ہے کہ ایمان میں کامل ہو جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار اور اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے والی زندگی نصیب فرمائے، اور یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مبارک مہینہ جو ہم کو نصیب فرمایا ہے، اس کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اسی پر اپنی موت آئے۔ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اسلام کی پاک تعلیمات پر رہتے ہوئے دنیا سے اٹھائے، اور اس کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
4: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
2: بھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔ اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعہ کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے۔
5: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم

0: वो जिंदाए जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊंग लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है, और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और उनकी निगेबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक बुजुर्ग को बरतर जात।
1: और रेडियो सुपरनिर्वाण ब्रिस्बेन पर मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। हर जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं मरहूम हजरत मौलाना बसीर अहमद दीवान के साथ आज जुमा है प्रोग्राम, जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन 9 से लेकर 9:30 बजे। और हम आपको याद दिला दें कि हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक आप सुनते हैं एक और इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें हम पेश करते हैं हजरत मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हर रविवार को 7 से लेकर 8 बजे तक। फिलहाल हर शुक्रवार की तरह हर जुमे के दिन जुमे प्रोग्राम के बाद आपके लिए हम पेश करते हैं चुने हुए रिलीजियस विंटेज कवाले हमारे प्लेलिस्ट से निकाली हुई। यह है रेडियो 1701 और मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।

वो अगर बस्ती में रहता है तो वीराने में कौन, वो अगर काबे में रहता है तो बुतखाने में कौन। लेकिन इधर हिंदू का ये कहना है कि मुस्लिम है बुरे, और इधर मुस्लिम का

है। आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है, हे से हिंदू बने मीम से मुस्लिम बने, हे मीम दोनों मिले जब हम बने। हिंदू का ये कहना है कि सनम में कुछ है, मुस्लिम का ये कहना है कि हरम में कुछ है, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि हम में कुछ है। तो जब हम में कुछ है

नाम मोहम्मद में, उस चांद के हाले में, जमशेद के प्याले में, शरमत के तकल्लुम में, फरहाद के जज्बे में, मजनू की मोहब्बत में, लैला की अदाओं में, शीरी की जपाओं में, घनघोर घटाओं में, दुनिया की बहारों

87.9 ब्रिस्बेन पर आप सुन रहे हैं कुछ चुने हुए ओल्ड विंटेज मजहबी कवाली, हमारी पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई कुछ चुने हुए ओल्ड विंटेज कवाली, जिसको हम पेश करते हैं हर शुक्रवार को जुमे के दिन

0: अले फिक्र में ढलता है अब मजमू मोहम्मद का।
1: अलिफ अल्लाह का है या अलिफ अल्लाह का है या कदे मौजू मोहम्मद का।
0: अरे मुशद्दद लाम है, मुशद्दद लाम।

0: दरबार में मसनद नशी है या इबादत में,
1: शजर में बरगु में है वो कमर में या के जिलवत में,
0: मदी

0: मुश्किल है जीना, बड़ी मुश्किल है जीना, और कुछ मुश्किल नहीं मरना। मजा तो जब है जीना और आबे इश्क में तिरना। शमा से पर जले, शमा से पर जले, लेकिन शमा पर शौक से गिरना।
1: शमा से पर जले लेकिन शमा पर शौक से गिरना।
0: तो इलाही कैस का मजनू का, इलाही कैस का तू और मेरा फैसला करना, कि वो दीवाना है लैला का तो मैं मजनू।

0: सगे भाई को उठकर भाई ने दरशा फेंका था और कुएं से काफले वालों ने फिर बाहर निकाला था
1: और सुलेखा ने बराबर के जवाहर से खरीदा था
0: और वही यूसुफ थे जिनको मिस्र में मालिक ने बेचा था। अरे कसम ले लो

कुछ सोच रखते हो तो फिर इजहार हो जाओ, अगर है दागे उल्फत अंदली बेजार हो जाओ, पढ़ो और पेशवाई के लिए तैयार हो जाओ, संभल जाओ।

0: और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक इस स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान, संगीत की जानकार, हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर। हर जुमे के दिन शुक्रवार को हम आपके लिए पेश करते हैं हमारा विशेष प्रोग्राम। आज जुमा है, 9 से लेकर 10 बजे तक, 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं मरहूम बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान, और उसके बाद हम करीबन 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में पेश करते हैं चुने हुए मजहबी कवालियाँ, ऑल विंटेज कवालियाँ। अगले एक बार तक के लिए आपको साथी फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
2: हर टोली बना के निकले ग्वाले करने को हुड़दंग, गोविंदा के दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे,